विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

वेलकम ब्याक वान सेकेंड ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन मकटक दिल से दिल तक सो चले छि मो देश हां सधी मो जन्मभूमि रे सबुठ बडा सौंदर्य हेउछि सेई सागुआ वन सागुआ गछ ओ शक्तिशाली उच्च ओ शक्तिशाली सेमानकर शाखा प्रशाखा आकाश को छुइबा को चेष्टा करे घन सबुज पत्र ग्रीष्म रे शीतल छाया देथाय वर्षा रे सेमाने अधिक सबुज होइ जांती पवन बहिले पत्र माने मृदु स्वर रे झुमि जांती मन हुए प्रकृति गीत गाउछि साथी सागुआ वन केवल देखिबा को सुंदर नहि एहा आमा पई अत्यंत उपकारी मध्य सागुआ काठ शक्तिशाली और दीर्घस्थायी मध्य जहा प्रकृति को आहुरी सुंदर करि देथाय

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक समय वर्तमान सकाल 6टा हेबाकु जाउची हिंदी रे संवाद रिले करे प्रचार करूचु आकाशवाणी दिल्ली रो
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं।

0: इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मन से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛେ ଶୋଭା ସକାଳ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीईयूटी स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
3: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
4: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।

0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
4: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ

0: किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
1: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमरीकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमरीका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, पालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नॉर्थपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
0: और अंत में मुख्य

0: हेलो आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक।
1: भौणी नमस्कार, जय जगन्नाथ।
0: नमस्कार, जय जगन्नाथ। के कहते
1: मुझे राजेश नायक, चक्तिका बजार, जगत सिंहपुर।
0: हाँ, मुझे आसपी आप फोन टा जमी लगे कथा ही लगे एथरे जम्मा भी
1: सर एटा भगवान को बरा तो मां सारा को कृपा रे लागे हम से ट्राई करछु कि हमर तो लागे हमर भगवान का मां का आशीर्वाद अछि हो
0: निहायती भाव रे आपन को स्वागत जणो जे तबे कोन कहबे टॉपिक संपर्क रे
1: सुन टॉपिक आ जंदे सेति पे दिल से धन्यवाद देबी आ ए टॉपिक ऊपर भौनी कहबी एक्चुअली कथा हो जी हमे तो स्कूल रे एमए स्कूल हाई स्कूल रे कॉलेज रे से पढ़ी के आसी छु आ मोर ओडे कोना मु खेले रे बहुत पारंगम थिली।
0: अच्छा,
1: मो वॉलीबॉल क्रिकेट खेल देली इंटर कॉलेज खेली छी स्टेट लेवल भी खेली छी किंतु गोटा जिनस हो जी अंतर्निहित गुण जोड़ा कहले एमिति केही नै जे ओडिया रु पढ़ी गिरी गजा किंतु वर्तमान युग रे आधुनिक अत्याधुनिक कली युग रे आपणकर जदि गॉड फादर थिबे ताले आपण आगु को बढ़ी पड़िबे नेता मंत्री जंत्री बड़ बड़ी हाथ थी ताले आपण आगु को बढ़ी गले आजिकल देखंतु सेकंड डिविजन थर्ड डिविजन लास्ट तो देखि चाकरी कर जाउछन्ती बेस्ट स्टैंड भी भल भल डिविजन पाई भी माने रिक्रूटेड पिला भी से जॉब पाउना तेणु मु बहुत चेष्टा कली आगु को जीवा किंतु जाई पारलिनी प्रिया प्रीति तोषण चलला लास्ट को आज्ञा छाड़ी देली मो कर्म रे मनोनिवेश कली।
0: अच्छा, आपण एते भल क्रिकेट खेलुथले क्रिकेट रे आउ टिके अधिक अग्रसर हेलेनी
1: सेपरा कहले आप गड फादर नई पार
0: जानते
1: आज एक्जामपल गोटे नेतार पुओ गोटे मंत्री पुओ सी चाहिए पुओ के आगे बढ़ी आगे जीव मान अंडर 19 खेल अंडर 16 खेल रणजी ट्रफी खेल आगे बढ़ो आम आज्ञा मलिमंडिया लोक चाषी लोक मिडिल क्लास फैमिली बापा आमर थर्ड ग्रेड कर्मचारी आम कौटे लाच दे पारू ना आगे बढ़ी पारू ना दे पार आगे जापरू
0: तेनाली
1: प्रिया प्रीति तोषण चलना से पचे रही कौन कर अंतर्निहित गुण थे भी बर्तमान कली जुगे आधुनिक जुगे आपड़ी लाच न दे पार घुस न दे पारे निश्चिंत भाव आगे जापारे ना।
0: हाँ, ये गोटे प्रकार सुंदर मत आज कल समाज को नहींक आप सुंदर मत रखी तेज तापर आप कौन कले निज बिजनेस निजे संभाले माने निजे गोटे प्रकार सुंदर भाव
1: गोटे बिजनेस कर घाटा सहले नुहे बरडिया जम्बाड़ी बिकिकी आप बाकी ठाकुर खाई खटुल खाई लोक आज्ञा सब सफा करदे मत जन भाई देश बाकी चल तेणु आम जदि देखिया घाटा लस सहवा बिजनेस रु माइंड हटे दबा दूसरा आइटम देखिया दूसरा बिजनेस देखिया तेणु मु क्रिकेट खेल को छाड़ी मोर जो रियल एस्टेट बेपार मोर जो ज्योतिष विद्या अच्छी फोर व्हीलर फाइनान्स रिफाइनान्स अच्छी जो थी भी किसी अल्प रोजगार बोधे हौ कि सुरखुरी चली बड़ आशा कले जमी अति लोभ तंत्री मरे आज्ञा सी आम गोटे कथार नहीं अल्प चाष कुटुंब पश बहुत चाष रहा बहुत चाष कले उपास रही पेट बदा करना शोबे
0: ओके सी नीति अनुसार निजे एपर्यंत सुरखुरी काम चली दैनंदिन जीवन रे आप बेस सुखर अच्छा शांति रे अच्छा जाहो आम सहित आज आप द्विपद कथा सकल सकल आमको भल लगे आप सहित कथ बहुत बहुत धन्यवाद
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर टॉपिक आपरा चार चांद लगे प्रोग्राम घंट उड़ी था रही भाई जय जगन्नाथ
0: जय जगन्नाथ सदा सर्वदा आम चेष्टा करिबा निजर जथेष्ट परिश्रम साधना निष्ठा एकाग्रता ए सब जम्मा आम हारिबानी हरेइबानी समयानुवर्ती हवा ठीक समय रे ठीक काम करिबा पई दृढ़ निष्पत्ति नबा संकल्पबद्ध हवा तेबे जे आम जीवन रे के पाद आगक अग्रसर हे परिबा तेबे निजर अंतर्निहित गुण को विकसित करिबा पई निजको केमिति आपण प्रस्तुत करंती आज आमको सीधासलख भाव में जन पारे आम टेलीफोन नंबर 0671-230-3153। एबे देखिबा आउ जने कलन को। हेलो आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक।
2: हेलो निशी मैम, शुभ सकाळ, शुभेच्छा, अभिनंदन।
0: की कहो छंती आगे?
2: आज्ञा, मु समीर खटुआ कहू नरसिंहपुर डेरा केन्द्रापड़ा।
0: आपनको स्वागत जणोची, कोन कहिबे आजर टॉपिक उपरे?
2: आज्ञा, अंतर्निहित गुण आज्ञा, एबे त हमर दिन को दिन सब वेटनरी साइंस रे नुआ नुआ इन्वेंशन सब

100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक एवं समय जाए शुणा कतोटी पुराणा हिंदी कथाचित्र गीत चलतु यू गीत बैक टू बैक

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष

0: 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first round of the civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. The Supreme Court today expressed concern over repeated lapses in the conduct of the NEET examination, saying it was sad that the National Testing Agency, NTA, had not learnt any lesson from the earlier paper leak controversy. A bench of Justices P.S. Narasimha and Alok Aradhe sought responses from the Centre, the NTA and the CBI on petitions demanding replacement of the testing agency with a more robust and autonomous body to conduct the medical entrance examination. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at the 250th Independence Day celebrations of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jayashankar said India and the US must always be clear about zero tolerance for terrorism.
3: We must always be clear about zero tolerance for terrorism. And that is why our counter-terrorism cooperation is so important. The people-to-people connect has also been a very special characteristic of our relationship. It has helped build political understanding between our two nations and remains a living bridge.
2: The Quad Foreign Ministers meeting will be held in New Delhi tomorrow. Foreign Minister of Australia Penny Wong, Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi and Secretary of State of the United States Marco Rubio will participate.

0: hitting 45.8 degrees Celsius. In the state capital Bhopal, it was 42.7 degrees, Gwalior recorded 44.1 degree and Jabalpur saw 43.3 degrees. The weather department says the heat is only going to get worse between May 25th and 28th and there is no sign of any relief till 31st May. Abhinav Goyal, Akashvani News, Bhopal.
1: Millions of pilgrims from across the world, including India, are converging at Mina in Saudi Arabia as the annual five-day Hajj pilgrimage began today amidst regional tension in West Asia. Benchmark domestic equity indices were trading around 1.2% higher during afternoon trade today amid hopes of a possible agreement to end the U.S.-Iran conflict. The Sensex surged 944 points to 76,360, while the Nifty climbed 270 points to 23,989 when reports last came in. The Norway Chess 2026 kicks off in Oslo today with round one matches. The tournament will officially begin at 8:30 p.m. IST. For the first time in its 13-year history, the super tournament has moved from Stavanger to the capital city of Oslo, hosting its matches at the iconic Deichman Bjørvika Public Library. India created history at the International Association of Ultra Runners 24-Hour Asia Oceania Championships held in Japan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Supreme Court seeks responses from Centre, NTA and CBI in NEAT paper leak case, says lessons still not learnt from earlier paper leak cases. Assam Assembly introduces Uniform Civil Code Bill. IMD issues yellow alert in Delhi for next 3 days. Heat wave conditions to also persist over Haryana, Bihar, Madhya Pradesh, Odisha and Telangana. And Norway Chess 2026 tournament to begin in Oslo this evening. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा, कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
3: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
2: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
4: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार

0: राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबे के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपये का

0: असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गो में शामिल खिलाड़ियों में मैगनस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन आईएयू

0: एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। यिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकार्टे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा बिहार मध्य प्रदेश उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी कटक आमर परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपारे विज्ञापन परे।

0: है तो टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: 100.4 आकाश बने फेम रनबो कर दिल से दिल तक वैसे तो सुनवा कदर ओडिया चलचित्र गीत।

हे फ्रेंड्स, ट्यून करछन्ति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे आपनको रेनबो साथी नारायण हाजिर हि जाई छी आपन मनक पई माने आपन मनक मनोरंजन पई। हां, आपन मनक सहित ए जर्नी ए टू स्टार्ट हो छी राती 11:00 बजी 10 मिनट पर्यंत आपन मनक सहित मोर सफर रहिब। तबे सफर आरंभ आपनको पई सुरिला आफ्टरनून को नै आसी सुरिला आफ्टरनून रो ए सुंदर अपराह्न को आपन मनक बहुत बहुत स्वागत। साथी आज सुंदर अपराह्न रे किछ स्पेशल कथा में कथा

सदै ट्यून करछन्ति 101.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे सोचालिछि वर्तमान सोरिला आफ्टरनून र सोरिला आफ्टरनून र सोरिला मुहूर्त को आपन मन को पुन थरे बहुत बहुत स्वागत मन कथा गीत साथे हां केवल प्रेम काहेकि जीवन र संघर्ष समय रे गीत हमकु आगकु बढ़िबा पाई प्रेरणा मध्य देइथाय जेतेबेले जीवन रे हार मानिबार समय आसे चारियारे केवल अंधार देखा जाए सेतेबेले कोनोसी एक मोटिवेशनल गीत आम पई आम भितरे एक नुआ जोश आउ उत्साह भरि देइथाय गीतर से शक्तिशाली लाइन गुड़िक आमको मन पकाई दियंती जे आमे दुर्बल नुह आमको आहुरी आगकु जीवाकु हबो संगीत आम भितरे लुचि रहिथिबा से साहस को जगेइथाय जहाँ को आम हे मने करूथिलु प्रकृत रे गीत हेउछि मनर आईना एहा आमको आमर प्रकृत परिचय सहित भेट करैथाय एवं जीवनर प्रतिदिनर क्लांति को दूर करी एक नुआ शक्ति प्रदान करैथाय तेणु जेतेबेले भी मन खराब हबो गोटे भल प्रेरणादायी गीत शुणन्तु आउ देखिबे तापरे आपणको मनर सबु बोझ केमती हल्का हेइ जाउछि

सदिट्यून करछन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक रे सुरिला आफ्टरनून रे आज हमें कथा उछंती अमर मनर कथा केमिति गीत कहे हां मनर कथा सब बेले गीत कहे मनुष गीत बिना त जीवन अतिवाहित केबे भी करि परिबनी किछि लोकंकर पसंद माने गीत सेते बेले मन पड़े बा गीत सुनिबाकु सेते बेले मन पड़े बा गीत सेते बेले गाइबाकु इच्छा हुए जेते बेले समानकर पुरुणा दिन कथा मन पड़े पुरुणा संगमानक कथा मन पड़े आउ तो किछि अछंती जो माने सारा दिनर काम जेते बेले काम करबाकु स्टार्ट करंती कामर ताले ताले समानकु किछि गीत दरकार तंग मन पसंदर तंग रुचि अनुजय किछि गीत सेति पई समान गीत माध्यम रे निजर काम को आगो को बढ़ांती तबे कथा होची आम दैनंदिन जीवन प्रतिटि कार्य गीत ओतप्रोत भाव चलित गीत केवल मनर कथा कहनी बरम एटा पुरुणा स्मृति को पुणि थे जीवंत कर दिए बर्ष बर्ष पुरुणा कथा जहाँ आम हूं भूली जाइ गोटे गीत शुणा मात्रे से सब स्मृति आम आखि सामने पुणी नाची उठे भासी जाए गीत हूँ से समय जो से समय जंत्र आम कहीपर जहाँ आमको अतीतर से सुंदर दिनगुड़ी को सहजरे फेरी नहीं जाए।

हे फ्रेंड्स ट्यून करछन्ति 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक समय छि वर्तमान डालिन लाइफ चिटचाट कार्यक्रम रो तो आपन मनन को कार्यक्रम को बहुत बहुत स्वागत

साथी आज डायलिंग लाइव चिटचाट शो रे आप टॉपिक रही जीवन रियल हीरो के हाँ आम समस्त जीवन रो तो निश्चित भाव में कई जने हीरो अच्छा भी ही पारंती जमीक आपण माँ भी ही पारंती बापा भी ही पारंती कौन सी आपणकर शिक्षक भी ही पारंती किंवा कौन सी बंधु भी ही पारंती सहित एमती भी आपण को मोटिवेशनल आपण को जी बहुत किसी मोटिवेटेड करुथे आगक जावाई प्रोत्साहित करुथे आपण जीवन में हिरो भी भावी पारंती किंबा एमती कही महापुरुष थे जो मान आपण फॉलो करुथे जीवन कथा पढ़ुथे जीवन रुकि इम्पोर्टाट कथा आपण अक्षर अक्षर पालन करुथे आपण जीवन परिवर्तन केन्द्रबिंदु एमती तांकु भी आपण हिरो बोली कहिपारिबे तेणु आपण जीवन में काहाकु आपण रियल हीरो हीरो बोली कहि परिबे ए संपर्क रे आपण आम सहित जोड़ी ही परिबे डायलिन लाइव चिटचैट कार्यक्रम माध्यम रे आम नंबर होची 0671-2303-153 तबे जानतु यार भितरे आपण मानको गुटे गीत सुने दबा आ गीत परे परे पुणी फेरबा आपण मानको पाखो ता भितरे आपण प्रस्तुत हे जानतु आ नंबर मध्ये मन रखतांतु 0671-2303-153 ए नंबर जरिया रे आपण माने जोड़ी ही परिबे एफएम रेनबो सहित आ कहि परिबे आपण को मनर कथा

0: 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक शो चली वर्तमान डालिन लाइफ चिटचाट कार्यक्रम आज एथे टॉपिक रही आपण जीवन रियल हीरो किए आम नंबर हूँ 0671-2303-153 ए नंबर जरिए आपएम रेनबो सहित जोड़ी पारे आपे आपण मनर कथ बर्तमान किए अच्छा आम सहित फोन लाइन देखा हेलो
1: भाई नमस्कार गुड इवनिंग जय जगन्नाथ
0: नमस्कार वेरी गुड इवनिंग जय जगन्नाथ के कोचंती आपनो
1: टाटा स्टील प्लांट कोथली आभास
0: टाटा स्टील प्लांट रु आभास कोचंती केमते ओछंती भलो ओछंती
1: बडा बढ़िया एबे छुट्टी 10 टाला काल यु मा मो जस्ट एकदम छुट्टी हला मु तड़प दउथली मेन गेट को पंची करिया को बस प्लांट बस पळे उत अस्तले ए पंची करिया मु कने बस बस चढ़ी रूम को जीबे टाइम तड़थे कथा कह देली
0: अच्छा अच्छा ओके आज कोन कहबा आभास रियल हीरो की आपन को जीवन रो
1: ओ मते मोर गाले मो बापा जते बापा मा सबडे बेटर सबडे दुख सुख कह सोई कि एते हम को बड़ पति के तीन कम करे कि केम ति पिल्ला ते भलो मनीष हो भलो रे भलो बड़ नाम नाट करिवो बड़ बड़ चाकरी करिवो किछि पैसा इनकम करिवो हमर ना इज्जत माने रखिवो तरे एते दुख कष्ट कहि हम बड़ करे कि जे आदि हम इस पर पहुंच बजु बापा ठा बेटर के हेबेनी दुनिया समस्त जार बापा अच्छा जार भाई अच्छा बापा जगह भाई भी करते भाई भी थे भी बापा भी करुच्ची मो मत जिते गार्डियन बापा
0: अच्छा तो माने आपन को छथिं आपन को गार्डियन बापा होछथिं आपन को रियल हीरो
1: सब बापा सब दुख सोई इते जळी जंजळ सोई कि ते हम केते मनुष्य इते इते इते बड़ करछथिं जे त बापा को कहबे नी रखी दुनिया सबटे दुनिया सबटे बापा
0: वेरी गुड बहुत बहुत माने बढ़िया कथा आपन कहछथिं आपन को पई रियल हीरो तो बापा तबे निश्चित भाबरे आपन कथा मने रहला एई बापा को नै कि आउ के रियल हीरो करूछथिं सेटा भी हमें देखिबा
1: नमस्कार
0: सदै आपण मैंने भी कहीपरिवे आपण जीवन रियल हीरो किए जमीक आभास कहले बापा हूँ जीवन रियल हीरो एमती भी आम समस्त रियल हीरो बापा हेपारे कहीं बापा समस्त मान सब पिला चिंता करती छोट ठारू मान छोट बेलू बड़ पर्यत से आमको बहुत किसी शिखी था जीक आम शिखिपर हूं तो दुनिया का शिखिपर तेणु रियल हीरो कहबारे किछि भी असुविधा ना जमी आवास कहले रियल हीरो किए बापा सेमती आपंकर रियल हीरो किए कहीपरिवे से संपर्क आपण बापा हे रियल हीरो तार किछि माने ना माँ भी पारती शिक्षक भी हो पारती बंधु भी हो पारती कि एम भितर कहीं भी नई अदर कहीं भी हो पारती से संपर्क आपण मनर कथा एफएम रेनबो सहित कहीपरिवे आम नंबर हूँ 0671-2303-153 आउ जने कलर अच्छा हेलो फोन टी कटि जाइछि के थिले हम जानि पालुनी तबे परवर्ती कॉल देखिबा परवर्ती कॉल के करछंती हेलो हाँ हेलो के कहउछंती
2: जय जगन्नाथ
0: हाँ शुभ संध्या के कहउछंती
2: विजय कुमार दास सौरी हट
0: विजय कुमार दास
2: आज्ञा
0: कौन कहले सौरी हट
2: सौरी
0: बहुत बढ़िया विजय भाई चोखा रेनबो
2: अच्छा
0: कौन कह जीवन रियल हीरो किए
2: रियल हीरो जन मो
0: बापा आ सुबिलन अपन कथा
2: हां मूल रियल हीरो जन मो
0: बापा
2: हां हमें आज जो जगह पहुंचो ताका भाई पहुंचो
0: अच्छा

0: साथी पुन्थरे स्वागत आपणमानंकु आजर कार्यक्रमकु डायलिन लाइव चिटचाट सो चालीछि बर्तमान एथरे आपणमान पें टॉपिक रहिछि आपणक जीवन रो रियल हीरो किए तो आपण माने मध्य जोडी जे परिबे आम सहित माने एफएम रेनबो सहित आम नंबर होची 0671203 बर्तमान के अछंती फोन लाइन ने देखिबा हेलो
1: नमस्कार सर जय जगन्नाथ मु सोमनाथ साहू कहतली जिगरण पट्टा मुंडे केन्द्रापड़ा
0: सोमनाथ साहू कहउछंती कार्यक्रम को स्वागत जणउछु केमती अछंती भलो अछंती
1: भगवान को कृपा आपन को ब्लेसिंग रो बहुत भलो अछि सर
0: भगवान कर आशीर्वाद आमर भल पाइबा आमर ब्लेसिंग केबे हि परिबोनी आमर भल पाइबा निश्चित हला बहुत धन्यवाद आपन को आपन माने जुड़ी हिछंती कोन कहिबे आजर टॉपिक संपर्क रे
1: आपण प्रथमे तो आपण हृदय रु धन्यवाद आ अभिनंदन देबी इत्ते बढ़िया टॉपिक रखछंती माने मु सुनिले ते खुशी लागिला
0: जीवन
1: रियल हिरो कही मो बाबा माने मते सब जीवन कहते कि सब कठिन परिश्रम अध्यवसाय कर तू आगे बढ़ु निश्चिंत आपा से कथा को जो रखते रियल हिरो बास्तव जीवन बास्तव मोर मान नायक मो बाबा जी मत आज जहाँ करते शिक्षा दे सब अनुसरण से नैतिक शिक्षा बल आज मो लाइफ बहुत खुशी अच्छी शिक्षा को मु निजर जीवन व्रत कर जीवन में बहुत खुशी पाई सर
0: बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कथा कहिछंती बापांक ठारो आ बड़ दुनिया रे केही भी हि पारिबेनी बापा मा सबठू गुटे पिला पाई सबु पिला मानक पाई आमे कहि पारिबा बहुत इम्पोर्टेंट आउ तांक ठार तो रियल हीरो आमे कहे माने आउ अन्य काहा को देई भी पारिबानी तो अन्य माने को आमे देई पारिबा सेटा अलगा कथा बापा मा सबु बेले आपनको पाई आमो पाई समस्त को पाई करंती अच्छा बापांकर आउ किछि खास कथा आपनको सबु बेले प्रेरित करथबो सेंति किछि अछि
1: मत कहते कि मुझे बेले कौन है ना परीक्षा पढ़ला बेले मार्क कमी गले बहुत भांगी पड़े धर मैथ को मुझे बहुत भल पाए 90% जगह मोर 80% थी बाबा मत कहते तोर आगे कौन भूल हो कौन कर ना बहुत तरतर है कैरे कि भूल हो जाए जोटा कि मुझे फेर प्राक्ट कला रेक्टिफाई कैर मोर भूल सब यही जगह ये गुणटा मानते भूल रू ठीक हम यही को मत सब मो जीवन व्रत ही अच्छी से कथा को मुझे करी जहा से सब भूल तो आगे हूं जीवन प्रति रास्त चलता बेले तो मनुष्य जीवन भूल बाल जदि आम से बापा कथा को मन पकई अनुसरण कर चलते तो किसी भूल भी होगी जाओ भाविक मत बापा से ही कथा मत सब कहते कि मानने जेकोसी कार्य करा बेले भाभी चिंती करवा किसी हड़बड़ न होकर पूरा स्थिर मस्तिष्क करवा से मो बापा सब पाए
0: बापा भी सुस्थ अच्छा
1: आज्ञा
0: बहुत बढ़िया जिते दिन पर्यत ये दुनिया अच्छा सबुले आशीर्वाद ने सब श्रेष्ठ हम बहुत धन्यवाद एफएम रेनबो सहित जोड़े मन कथा नमस्कार सर जय
1: जगन्नाथ
0: जय जगन्नाथ सदी डायलिन लाइफ टॉपिक रही जीवन रियल हीरो किए ए संपर्क में जोड़ी जापरेंगे एफएम रेनबो सहित 0671203 नंबर जरिए मन कथ हेलो
2: हेलो
0: हाँ हेलो किए कहते
2: ना भाई नमस्कार
0: नमस्कार किए कहते
2: आलोक चंद्र जेना जानल कटक
0: बहुत शीघ्र कहीदे
2: आलोक चंद्र जेना जानल कटक
0: आलोक चंद्र जेना जानल कटक रु बहुत पुराना ना केमती अच्छा भाई
2: भाई चंद्र तो ग्रहण
0: लगी चंद्र रे ग्रहण लगी जा ग्रहण भी तो दिने दिने दिन ना दिन जीव व्यस्त कहीं
2: समय तो आस्ते आस्ते बढ़ी
0: एटा ईश्वर इच्छा एटा भावी नहीं पारती चंद्र रे जदि ग्रहण लगी से किसी मुहूर्त तेणु मनुष्य जीवन जिते ग्रहण लगुच से ग्रहण हुए तो टे समय सापेक्ष कहीं मनुष्य धैर्य विश्वास ये संभव नुहे सहवा बहुत कष्ट
2: भाई आज सकाल।

0: साथी बन्धुरे स्वागत आपमनको कार्यक्रमको डाइलिन लाइफ चिटचाट रे आपमन पे टॉपिक अछि आपनको जीवन रो रियल हीरो किए के अछन्ति वर्तमान फोन लाइन रे देखिबा। हेलो
1: हेलो भाई नमस्कार।
0: नमस्कार के कोछन्ति?
1: मु रमेश कोथली औकमा भाप रे कारु भाई बहुत दिन पर चेष्टा पर लागै छी आपन बहुत खुशी भी अछि।
0: रमेश चंद्र साहू औकमा भापुर ढेंकानाल रु गोलाकाली भी आपण करितले किंतु आपनको कस्टमर माने पूरा टेंशन दे दले नो की
1: निश्चिंत मैडम का ए जो भाई देखंतु
0: आगे
1: माने जतले ग्राहक रहउछन्दी मो फोन को अनेक रहउछन्दी माने कोन कहि देली माने एडा आपन को रेडियो कथा सुनि सो छाड़ दे जी आ यार कहिया को चिंता करे मते पांच जन ग्राहक आउछन्दी कोन करिवे ते भाई
0: रक्षा को बात होउछ कर्म कर्म आगे देन आउ सब किछि कौन कहे पटापट कह दियंतु नहले पुनी आपन कर ग्राहक माने आसी के आपन को तंग करबे
1: ग्राहक नाम तथापि कहि अछि।
0: हां
1: भाई मोर पकुत रियल हीरो छी मोर मझिया भाई।
0: मझिया भाई
1: आज्ञा
0: क्या बात है गुडा नोवा कथा में सुनिलु बहुत बढ़िया कोन
1: थैंक यू बापा बापा चासो अंदर लगिले से तो एरा किछि जानत नी कोन केते पाठ विभिन्न पाठ पढले मध्ये हम चाकरी क्षेत्र रे चाहिली किन चाकरी हलानी किंतु मते से गुड 1947 मे छरे मते से दुकान ते स्थापन करी बसैले।
0: अच्छा भाई
1: 70,000 टका फर्स्ट दुकान देथले दुकान आस्ते आस्ते बढ़ी जहाँ भगवान दिटा पुआ पाठ पढ़ी चाकरी कलि
0: आई
1: संसार चलती सब प्रकार कारण से जेहतु दुकान टी मो चेषा कले मुझे चाकरी भी खेलानी से मो चेषा कर दुकान टे आरम कर दुकान टे छोट दुकान बर्तन के भल चल 28 वर्ष दुकान हो चाहे मो मझे बहुत किसी कर
0: अच्छा मोजे भाई कौन करंती
1: से भी बिजनेस करंती।
0: अच्छा
1: चलते थे
0: ए
1: तांकर से भी बड़ा हो गेलनी मोटो बहुत बहुत बहुत बहुत 65 वर्ष।

पिता दक्ष के यज्ञ में पति के निरादर से अपमानित होकर सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला। देवाधिदेव महादेव ने जब ये समाचार सुना तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उनसे आदेश पाकर अनुचर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करके सभी देवताओं को दंडित किया। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। मरते समय सती ने हरि से यह वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव चरणों में उनका अनुराग बना रहे। इस वरदान के फलस्वरूप सती ने पर्वतराज हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा जन्मी तब से ही पिता के घर सारी सिद्धियों और संपत्ति की भरमार हो गई। चहुं ओर सुख तथा समृद्धि का साम्राज्य फैल गया। पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होने लगे। पार्वती के जन्म का समाचार सुन नारद मुनि एक दिवस हिमाचल के घर पधारे। आदरपूर्वक मुनि के चरण धोकर पर्वतराज ने पुत्री को मुनि चरणों में डाल दिया तथा त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ नारद जी से उन्होंने कन्या के गुण दोष बताने का निवेदन किया।

मुनि ने मंगल वचन कहे, तुम्हारी कन्या स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। लोग उमा, अंबिका तथा भवानी के नाम से इसकी वंदना करेंगे। ये अपने पति को अत्यंत प्रिय होगी तथा इसका सुहाग अचल रहेगा, किंतु इसकी हस्तरेखाएं संकेत करती हैं कि इसका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेशधारी होगा।

0: नवदिल्ल्याम् अन्तरमन्त्रालयीय संवादं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवा डॉक्टर सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे एलपीजी इत्यस्य शोधनागारस्य उत्पादनं प्रतिदिनं 50,000 टन परिमितं यावत् अस्ति।
1: रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् भारतीय दूतावासः वाणिज्य दूतावासश्च भारतीय प्रवासीनां कल्याणाय निरन्तरं सम्पर्करतौ स्तः। श्री जायसवालः अवदत् यत् मंत्रालयः गल्फ क्षेत्रे बृहत् संख्यायां स्थितस्य समुद्रीय समुदायस्य सर्वविध साहाय्यं प्रददाति। उर्वरक विभागस्य अपर सचिवा अपर्णा शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे उर्वरकानां समग्र भण्डार स्थितिः अपि सुखकरः एव अस्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन नीट परीक्षा पत्र लीक प्रकरणे केन्द्रस्य एनटीए सीबीआई इत्येतयोः च प्रतिक्रिया याचिता। सहैव प्रकरणेऽस्मिन् दिल्ल्याः न्यायालयेन पुणे नगरस्य भौतिक शास्त्रस्य आचार्यां मनीषा संजय हवलदारं नीट यूजी परीक्षा पत्र लीक प्रकरणे केन्द्रीय अन्वेषण संस्थायाः षड्दिनानाम् अभिरक्षायां प्रेषितम्। विशेष न्यायाधीशेन अजय गुप्तावर्येण अभियुक्तया सह अभिरक्षायां प्रश्नोत्तरमुद्दिश्य सीबीआई इत्यस्य आवेदनं स्वीकृतम्। मनीषा इत्येषा मई मासस्य 22 दिनांके निगडिता आसीत्। ट्रांसिट रिमांड इत्यनेन माध्यमेन न्यायालये उपस्थापिता च। सीबीआई इत्यस्य अनुसारं नीट यूजी परीक्षा सामग्रीनाम अनुवादिका रूपेण कार्यं कुर्वन्ती पुणे नगरे सेठ हीरालाल सराफ प्रशालया सह सम्बद्धा अन्यैः अभियुक्तैः सह अनुवादार्थं भौतिक शास्त्रस्य प्रश्नान् प्रसारितवती इति आरोपः अस्ति। प्रियाः श्रोतारः संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। असम सर्वकारेण अद्य राज्य विधानसभायां समान नागरिक संहितायाः विधेयकं स्थापितम्। विधेयकं बहुविवाहं प्रतिषिद्धुं लिविन संबंधानां पंजीकरणं अनिवार्यं कर्तुं च प्रयतते। विधेयकस्य व्यवस्था अस्ति यत् असम राज्ये निवसतां अनुसूचित जनजातीनां कृते एतत् न प्रवर्तयिष्यति। विवाहार्थं विधेयकं पुरुषाणां तथा महिलानां कृते क्रमशः 21 वर्षाणि 18 वर्षाणि च न्यूनतमं आयुः स्वीकरोति तथा च बहुविवाहं निषेधयति। विधिसम्मत अधिकाराणां रक्षणार्थं विधेयके विवाह पंजीकरणं विवाह विच्छेद पंजीकरणं अनिवार्यं च कर्तुं प्रस्तावः अस्ति। यद्दंपति कृते भरण पोषणस्य उत्तराधिकारस्य अन्यानां विधिसम्मत संरक्षणस्य च सुरक्षायै महत्वपूर्णं भविष्यति। राज्यस्य मन्त्रिमण्डलस्य मन्त्री अतुल बोरा इत्येषः मुख्यमन्त्रिणः हिमन्ता बिस्वा शर्मा इत्यस्य पक्षतः सदने समान नागरिक संहितायाः असम विधेयकं 20-26 इति प्रस्थापयत्। अनेनैव असम राज्यं पूर्वोत्तरस्य प्रथमं देशस्य तृतीयं च भाजपा शासितं राज्यम् अभवत् यत् यूसीसी इति विधिं प्रावर्तयत्। भाजपेति दलं 26,000 विधानसभा निर्वाचनात् प्राक् असम राज्ये स्वस्य घोषणापत्रे यूसीसी विधेयकस्य प्रतिज्ञाम् अकरोत्। अस्मिन्नेव मासे 13 दिनांके राज्य मन्त्रिमण्डलेन प्रथम सभायां विधेयकं स्वीकृतम्। वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः अद्य पश्चिम एशिया संकट कालावधौ इन्धनस्य उर्वरकस्य विदेशी मुद्रायाः च विषये अधिकं ध्यानं दातुम् आहूतवती। देशीय अर्थव्यवस्था निरन्तरं सुदृढा एव अस्ति इति उक्तवती। मुंबई नगरे सिडबी संस्थायाः सप्तत्रिंशत्तमे वार्षिकोत्सवे आयोजिते कार्यक्रमे भाषणं कुर्वन्ति वित्तमन्त्रिणा उक्तं यत् डीजल पेट्रोल उत्पाद शुल्कयोः न्यूनीकरणेन एकलक्षकोटिरूप्यकाणां राजस्वस्य

0: के लोगों के साहित्य और जो अलिखित कला है जिसको कि इंस्टीट्यूशन में या अनुष्ठान में उसका मान्यता अभी तक नहीं मिला है, उसी को बस हमने 40 साल तक काम किया और उसी को स्कूल एजुकेशन में भी डाला जो आदिवासियों का था। उसमें मैं 41 भाषा में 41 लैंग्वेजेस भारत की 5 स्टेट में 35 लाख बच्चों को क्लास 1 से क्लास 5 तक शिक्षण सामग्री मैंने बनाने के लिए मदद किया।
1: द्वितीय पर्याय पुरस्कार प्रदान समारोह नहीं पर कार्यसूची घोषणा करा जिबो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज नूआदिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साक्षात करिछन्ति। ओडिशारे भित्तिभूमि विकास पुंजनिवेश एवं जनकल्याणकारी योजनागुड़िकर कार्यान्वयन संपर्क में श्री मोदी आलोचना होइथिबा मुख्यमंत्री सूचना देइछन्ति। राज्य में अन्नदाता सशक्तिकरण एवं ग्रामीण अर्थनीतिर विकास पर सरकार प्रतिश्रतिबद्ध बोली मत्स्य और प्राणी संपद विकास एवं एमएसएमई मंत्री गोकुलानंद मल्लिक कहते। गंजाम जिला पोलसरा निर्वाचन मंडली डेंगापदरठारे एक कार्यक्रम में जोगद 11 प्राथमिक कृषि समवाय समिति पैक्सर भित्तिप्रस्तर स्थापन कर पैक्स केन्द्रगुड़िक कृषकों सहजरे ऋण विहन सार एवं विभिन्न सहायता प्रदान करने सह से आर्थिक स्थित को आहरी सुदृढ़ कर। एथिसह मंत्री श्री मल्लिक एकाधिक नूतन अंगनवाड़ी केन्द्रर मध्य उद्घाटन करिछन्ति। नूतन अंगनवाड़ी केन्द्रगुड़िक शिशुंक उन्नत परिवेश एवं सुस्थ भविष्यतर भित्ति स्थापन करिवारे सहायक हेबो बोली मंत्री श्री मल्लिक आशा व्यक्त करिछन्ति। राज्यर विभिन्न विधानसभा निर्वाचन मंडलीर बूथस्तरीय अधिकारी बीएलओ एवं पर्यवेक्षकों एक स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन प्रशिक्षण शिविर अनुष्ठित आसंता 30 तारीख आरंभ होगा। संशोधन प्रक्रिय भोटर तालिका को त्रुटिशून्य करने लक्ष्य नहीं एही शिविर आयोजन करा क्षेत्रस्तरीय प्रस्तुति को अधिक सशक्त करिबा एवं सरकारी नियमावली सठिक अनुपालन उपर प्रशिक्षार्थी तालीम प्रदान ग्रीष्म परिस्थिति को दृष्टि रखि संशोधन कार्य नियोजित बूथस्तरीय अधिकारी सुरक्षा पर एक स्वतंत्र मार्गदर्शिका जारी करा सका 6 पूर्वाह्न 11 और अपराह 4 संध्या 7 पर्यंत क्षेत्रीय कार्य करने को अंशुघात रक्षा पाइबा आवश्यक सामग्री एवं जरूरीकालीन जोगाजोग मोबाइल फोन को पाखे रखा बाध्यतामूलक। राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी देवगड़ गस्तरे जाई विभिन्न कार्यक्रम में जोग देइछन्ति। जिल्लापालंक विकास भवन सम्मेलनी कक्षरे उन्नयनमूलक सरकारी योजना एवं 2026-27 आर्थिक वर्षर कार्य खसड़ा प्रस्तुतिर मंत्री श्री पुजारी समीक्षा करिछन्ति। बैठक में जिल्लार विकास निमन्ते कार्यकारी होउथिबा सरकारक विभिन्न योजना संपर्क में आलोचना होइछि। बारकोट ब्लॉक कंडल ग्राम पंचायत बालीपोसी हस्तशिल्प समरखाई आयुष्मान आरोग्य मंदिर को मंत्री गस्त कर आंचलिक संवाद सुनुछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्र। समृद्ध ओडिशा 2036 एवं विकसित भारत 2047 स्वप्न साकार दिगरे ग्रामीण रूपांतरण को दृष्टि रखि राज्य आज दुईट योजनार शुभारंभ हो आदर्श ग्राम अभियान एवं महापुरुष आदर्श ग्राम योजना राज्यव्यापी कार्यकारी होइछि। आभासी माध्यम ग्राम्योन्नयन पंचायतराज और पानीय जल मंत्री रवि नारायण नायक यार शुभारंभ कर। प्रथम पर्यायर राज्य 6,733 ग्राम पंचायत समस्त ग्राम को आसंता 2029 सुधा आवश्यक भित्तिभूमि और सुविधा जोगा

0: बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी सटीक और सच्ची खबरें।
0: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहा
1: है, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर।

मेरे प्यारे देशवासियों, आपने एक बात ऑब्जर्व करी होगी, हमारी मन की बातों ने स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति दी है और इसी तरह से स्वच्छता के लिए किए जा रहे प्रयासों ने भी मन की बात को हमेशा ही प्रेरणा दी है। ऐसा नहीं है कि हमने स्वच्छता में आदर्श स्थिति हासिल कर ली है, लेकिन जिस प्रकार से ODF से लेकर सार्वजनिक स्थलों तक स्वच्छता अभियान में सफलता मिली है, वो 130 करोड़ देशवासियों के संकल्प की ताकत है। लेकिन हम इतने पर रुकने वाले नहीं हैं। यह आंदोलन अब स्वच्छता से सुंदरता की ओर बढ़ चला है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं मीडिया में श्रीमान योगेश सैनी और उनकी टीम की कहानी देख रहा था। योगेश सैनी इंजीनियर है और अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर मां भारती की सेवा के लिए वापस आए हैं। उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली को स्वच्छ ही नहीं बल्कि सुंदर बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने अपनी टीम के साथ लोधी गार्डन के कूड़ेदानों से शुरुआत की, स्ट्रीट आर्ट के माध्यम से दिल्ली के कई इलाकों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने संवारने का काम किया। ओवरब्रिज और स्कूल की दीवारों से लेकर झुग्गी झोंपड़ियों तक उन्होंने अपने हुनर को उकेरना शुरू किया तो लोगों का साथ भी मिलता चला गया और एक प्रकार से ये सिलसिला चल पड़ा। रंग और रेखाओं में कोई आवाज भले ही न होती हो, लेकिन इनसे बनी तस्वीरों से जो इंद्रधनुष बनते हैं उनका संदेश हजारों शब्दों से भी कहीं ज्यादा प्रभावकारी सिद्ध होता है। और स्वच्छता अभियान की खूबसूरती में भी ये बात हम अनुभव करते हैं।

हाँ साथी, जेतेबेले बॉलीवुड रे भव्यता, रोमांस, पारिवारिक संपर्क एवं सुमधुर संगीतर कथा आसे, सेतेबेले आगरे सर्वाग्रे आमे कहिपारिबा करण जोहरंकर नाम मनकु आसथाय। 1998 मसीहारे निजर प्रथम निर्देशित चलचित्र कुच कुच होता है, एही चलचित्र माध्यमरे से जो यात्रा आरंभ करिथिले ता आज पर्यंत भारतीय सिनेमा को एक नुआ दिग्दर्शन दे चलिछि।

साथी एबे नजर पकेबा पानीपाग उपरे राज्यर ग्रीष्म प्रभाव जारी रहिछि। भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्रर सूचना अनुसार आसंता चारि दिन पर्यंत प्रबल गरम एवं गुळगुळी अनुभूत हेब। आसंता 24 घंटा मध्ये संबलपुर बलांगीर जिल्लार केतेक स्थानरे प्रबल ग्रीष्म प्रवाह नै पानीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु सतर्क सूचना जारी करा जायछि। अन्यपक्षे कालबैशाखी प्रभावरे झड़वर्षा नै 21 जिल्लाकु पानीपाग केन्द्र पक्षरु सतर्क करा जायछि। आज सर्वाधिक दिनर तापमात्रा 45.8 डिग्री सेल्सियस टिटलागढ़ ठारे रेकर्ड करा जायछि।

सदै शेषे एदिके आम कहिबा जे अंशुघात बा सनस्ट्रोक लक्षण प्रति नजर रखन्तु जदि अत्यधिक मुंड पिंधिबा बांधि हेबा मुंड बुलेबा एवं उच्च ज्वर किंबा शरीर निस्तेज हेबा पर लक्षण देखा जाउछि तबे तुरंत व्यक्तिंकु पवन चलाचल करुथबा थंडा स्थानकु आणन्तु तांका शरीरकु ओदा कपडारे पोछि दियन्तु एवं ओआरएस किंबा लुण चीनी पानी पीबाकु दियन्तु अवस्था गुरुतर हेले विलम्ब न करिकि तुरंत डाक्तरखाना सेमानकु नै जान्तु निजे सचेतन रुहन्तु एवं अन्यमानकु मध्य एथिपई सचेतन करान्तु आपणक जो आखपाखरे आपण एमिति भी करिपारिबे बाहर किछि पानी मध्य रखिपारिबे जहाँफलरे बाहर पशुपक्षी सेमाने मध्य ए जो उत्ताप गरमरु रक्षा पाइबा पई सेमानक शोष मेंटिबा पई से पानी मध्य पीपारिबे एटा बहुत लाभदायक हेइपारिबो तबे साथी आजर संध्या आसर कार्यक्रम को एठी रखिबा।

साथी बंधुरे स्वागत आपण आज कार्यक्रम को गीतरे मित्र कार्यक्रम को ट्यून कर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक। हाँ साथी, प्रेमर अर्थ केवल आई लव यू कहबार नुहे, केबे केबे बिना किछि कहि मध्य कहार साथी हबा, कहार लुह पोछिदबा एवं कहार ओठरे हस फुटेबा मध्य सबुठ बड़ प्रेम। अगुआ कथार निजस्व एक संगीत थाए जहाँ केवल हृदय ही शुणीपे, जेतेबेले दुईटी आखि मिसि जाए सेतेबेले सारा दुनियार सबु भाषा से निरवता सामनारे छोट भली मन हुए। ए प्रेमरे कौनसी सर्त न थाए, ना थाए कौनसी दाबी, बस थाए तो केवल परस्पर प्रति अगाध विश्वास और समर्पणर भावना।

0: 104.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେଲିକରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।

0: अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
3: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
4: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
3: Fertilizer and foreign exchange.
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
5: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है, इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
6: Several key agreements were signed.
7: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
8: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
0: उर्वरक विभाग की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार

0: संतोषजनक बना हुआ है।
1: अगेंस्ट द असेसमेंट ऑफ
2: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश

0: लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटे

0: की तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
1: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरम मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation underway to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system. 286 tourists rescued so far. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today conferred the Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. the actor's wife and Lok Sabha

टन करछन दे 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो कटक दिल से दिल तक समय वर्तमान अभुला स्मृति रा किछि पुरुणा ओडिया एवं हिंदी चलचित्र की तरह प्रथम गीतटी हीरो चलचित्र गाइछन्ती रेस्मा

0: दुश्मन न करे दोस्त।
1: परवर्ती चलचित्र आखिर क्यों गीत गई लता मंगेशकर एवं अमित कुमार।

रेनबो कटक दिल से दिल तक समय बर्तमान आपणकर बर्तमान समय होची आपणकर खासो रेनबो एसएमएस रो साथी रेनबो एसएमएस रे जदि चाहौछंती आपण माने आपणक मनपसंद रे किछि गीत सुनिबाकु आमको एसएमएस करि परिबे हमर स्मार्ट एसएमएस नंबर जरिया रे 09495963210 ए नंबर रे तबे केमिति करिबे हमको एसएमएस फर्स्ट टाइप करंतु एफएमआरसी तापर गुटे स्पेस देकी को फिल्म को एल्बम लगित सुनिबाकु चाहौछंती तार ना लेखंतु तापर गुटे स्पेस देकी गीतर फर्स्ट लाइन लेखंतु तापर गुटे स्पेस देकी आपनको ना एवं एड्रेस सहित आम पखकु पठि दियंतु 09495963210 ए नंबर रे।

0: ସାର୍ ସମୟ ହେଉଛି ଆଜିର ରେନ୍ବୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଟ୍ ରଖିବା। ଟ୍ୟୁନ୍ କରିଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ କଟକ ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 11:00 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲି କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
2: High international crude prices and
3: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
2: Fertilizer and foreign exchange.
1: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम

0: रेशम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
1: अपन मने कार्यक्रम सुनचोंदी आकाशवाणी कटक केंद्र रो।
2: नमस्कार, वर्तमान मुख्य संवाद सह मु लहरिका पटनायक। प्रथम पर्यायर देशर सर्वोच्च बेसामरिक नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार प्रदान कले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सम्मानित हेले ओडिशार डॉक्टर महेन्द्र कुमार मिश्र। चलित वर्ष मोट 131 जणंकु पद्म पुरस्कार पाई मनोनीत करा जायछि। नूआदिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सह साक्षात आलोचना कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ओडिशार भित्तिभूमि विकास, पुंजनिवेश तथा जनकल्याणकारी योजनागुड़िकर कार्यान्वयन संपर्क कले आलोचना। आसंता मास 21 तारीख में पुणि हेबाकु थिबा नीट स्नातक 2026 परीक्षा सुरखुरी संपन्न करने लागि समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचल कर्तृपक्षक सहयोग लोड़े केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। श्रीक्षेत्र पुरी में महाप्रभु श्रीजगन्नाथ स्नान यात्रा और रथयात्रार श्रृंखलित नीतिकांति बैठक अनुष्ठित। रथ उपर अजथा अधिक सेवायत न रहा निष्पत्ति। ओईआरसी अध्यक्ष पदर् इस्तफा दे पूर्वतन मुख्य शासन सचिव प्रदीप कुमार जेना व्यक्तिगत कारण दर्शाई दे इस्तफा। ईद उल जुहा आसंता 27 तारीख परिवर्तन 28 तारीख में पालन कर दृष्टि रखि 28 तारीख को छुट्टी घोषणा कले राज्य सरकार। पुरी में आसंता जून 3 तारीख में हेबो ब्रिक्स द्वितीय वैश्विक सम्मेलन विपर्य परिचालन अंतर्जातीय सहयोग संक्रांत आलोचना होवार सूचना। एलपीजी और पीएनजी जोगाण में नियम कोहल कले सरकार। एलपीजी पीएनजी और पीएनजी एलपीजी को परिवर्तन पर मिल 30 दिन महलत। देशर सार्वजनीन प्रसारण सेवा जोगाई आकाशवाणी चलित वर्ष पालन करुछि 90 वर्ष पूर्ति उत्सव। एहि अवसर में आसंताकाली आकाशवाणी कटक केन्द्र पक्षर् जवाहरलाल इंडोर स्टाडियम बारवाटी स्टाडियम पर्यंत पदयात्रार आयोजन कराई। आसंताकाली आईपीएल प्रथम क्वालिफायर मैच में सर्वोच्च पॉइंट पाई रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु गुजरात टाइटन्स को भेट सीधासल फाइनाल प्रवेश करेंगे विजेता। मुख्य संवाद आज शुभरात्रि नमस्कार।

कुछ खास कुछ नया कुछ अलग हो आज, संडे का मॉर्निंग है, कुछ खास हो आज। हेलो हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल स्टूडियो घंटे समय हिसारसी 7:25 सकाळ सकाळ आपण माने जदि संडे रे फंडे रे ट्यून करिसेंती 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो तो दिल थाम के बैठ जाइए दोस्तों, कारण रेडियो सपकरा आपण माने रेडियो पकरा से की पहुंची जाई छी आपण कर म्यूजिकल हमसफर विश्वजीत सुनेबा पई आपण को मीठा मीठा गीत पूरा फुल टू मस्ती करबा संडे रो मॉर्निंग रे। आउ आपण मानको सेतपई शुभ सकाळ कार्यक्रम को स्टार्ट करबा पूर्व जणै दउची गुड मॉर्निंग।

ସନ୍ଡେର ଫନ୍ଡେର ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି 100.4 ଆକାଶବାଣୀ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେନ୍ବୋ ସହିତ ଶୁଭ ସକାଳର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ମେଲୋଡିୟସ୍ ଟ୍ରାକ୍ ସହିତ। साथी आज कौन नहीं पिटार शुभ सकाल आज संडे आपण मान गोटे दायित्व सहित मुझे फन तो करवा मजा तो करवा कि गोटे बहुत सुंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी जहां बर्तमान आपण मान समस्ते पालन कर आवश्यकता अच्छी कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी संडे रे की रेस्पॉन्सिबिलिटी दबा आमको साथी आजिकाली आपण सकाळु घरु बाहरला बेळे प्रथमे पाद काढिला बेळे आपण निजे देखुथिबे जे पशु पक्षी गच्छ लथा मणिषंक पूर्वरु आम आखिरे किए किए पड़ी जाउचंदी कहिले विभिन्न कलर साइज एवं वेराइटीर पॉलिथिन जरिबा सिंगल यूज प्लास्टिक घर पाखरे माटी रास्ता उपरे घास उपरे सबु जगारे निजरा मालिकाना को सब्यस्त करी आराम भावरे पूरा सोई थांती गोडू थांती पड़ी थांती एई सिंगल यूज प्लास्टिक गुड़ा पॉलिथिन जरी माने आपण माने जानी चंती देखु थिबे सेमानकु वर्तमान जदि बाहर कु जिबे देखि परिबे सेमानकु सबु बडे सेमाने पड़ी थिबे तबे ए जो पॉलिथिन बा सिंगल यूज प्लास्टिक यार अतिरिक्त व्यवहार रो कारण भी कोठी ना कोठी हम माने समझते आमर दैनंदिन रो आवश्यकता अल्प बहुत समस्त कथा को जानुचे जे सिंगल यूज प्लास्टिक बा पॉलिथिन रो व्यवहार हमें परिवेश प्रति हमर प्रकृति प्रति केते नेगेटिव इंपैक्ट पकोउची ए कथा हमें जानुचे किंतु हम बोलते हैं जे अल्टरनेटिव क्या है यार माने विकल्प व्यवस्था कौन आम बाहर करवा जहाँफल कि यार व्यवहार को बहुत कमेपर से आमको सचेतन हबार समय एवं आसी जाइए बर समय गड़ी गड़ी चली समस्त मन भितर से गोटे कथा यार विकल्प कौन जदि पलिथिन को ना तो कौन को व्यवहार को हाँ करवा तार विषय तो शुभ सकाल डिस्कसन करवा आज केमती कौन कले आम सिंगल यूज प्लास्टिक व्यवहार को टे ना कहीपर कारण आसंता का जेतेबेले पूरा वर्ल्ड सेलिब्रेट करिवो इंटरनेशनल नो प्लास्टिक डे सेतेबेले प्लास्टिक फ्री रो डे जदि पालन करबा पई जाउचा आसंता काली तबे आजठू ए छोटिया दायित्व म आपन मानको पई नेके आसी छि जे आमे निजे टिके सचेतन हबा ए सिंगल यूज प्लास्टिक रो निजो को केमति दूरै रखिबा ता पई आज रो ए शुभ सकाळ टिके डेडिकेट करबा कारण आसंता काली तो समस्त विषय कहिबे निश्चय किंतु जदि आजठू आमे जानिबा आजठू टिके प्रयास आरंभ करबा तबे हुए त आसंता काली टु गुडे नुवा दिन आरंभ हम गोटे नुआ प्रयास सहित आपण आगु को बढ़िबे ए सिंगल यूज प्लास्टिक बा प्लास्टिक फ्री रो जो कथा आमे कहूचे ता विषय टिके आमको सचेतन हबार आवश्यकता आसी।

ସୁଆଇ ଦୌଡ଼ି ରାତି ସାରା ଚେହେରା ତ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା, ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର ଚିନ୍ତା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ମାନଙ୍କୁ ରାତି ସାରା ସୁଆଇ ଦୌଡ଼ି ସାଥି ହେବେ। वेलकम बैक टू 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो संडे और फंडे रा मॉर्निंग रे म्यूजिकल हम सफर विश्वजीत अच्छे अपन मानक संगे रे ट्यून करी चंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो को चंदी दिल से दिल तक। आसंता काली जते बेले वर्ल्ड सेलिब्रेट करिवो इंटरनेशनल नो प्लास्टिक डे बा प्लास्टिक फ्री डे से

हर कदम हर एक कहानी है, हर अदा एक गीत, नाचना तो है ये जिंदगी, कभी हार कभी जीत। हाँ, हार जीत रे सिलसिला भितरे, हार जीत रे कारोबार भितरे, समय रे तड़े आम समस्ते नाचुचे। एवं जमिति स्टेज रे नाचिला बेले डांसर टी केबे स्टेप भूल करिबो से समिति टी केबे केबे अन्यमनस्क भी हो जाए, किंतु गोटिए क्षण भितरे तार भूल को से सुधारी निए एवं सांगे सांगे जस्ट किछि समय भितरे ही ता पके सुजोग थाए कमबैक करिवारो। से भूल से सीखे आउ थरे तक भूली जाए नेक्स्ट मूव रे तार फुल कॉन्फिडेंस सहित करि पारे ब्यूटीफुल कमबैक। समिति जीवन में भी समस्तंकर मन समस्तंकर दिन सबुबले भल जाएनी, किंतु समय रे ताले ताले ए नाचिला बेले जते बेले किछि आमे सिखिबा को पाउ से भूल रु सिखी जीवन रे कमबैक करिवार एटीट्यूड रखिबा ही सबुठारु भल डांसर रो एटीट्यूड, हार न मानिबार दृढ़ मनोबल एवं ता सहित समय रे ताले रे ठक ठक ठक ठक थरक थरक चलुथवा ए पाद देखिबे सबु किछि हेजिबो बहुत इजी बहुत ब्यूटीफुल। ठीक এই ডান্স গীত ভিড়া যা আপনার মর্নিং কু করদব পুরা বিউটিফুল, যদি নাচবে আ সহ ইয়াদি ধুন সহ আপনার কন রেডি তো রেডি স্টেডি পো।

वेलकम बैक अगेन ऑन 100.4 आकाशवाणी एफएम ब्रनबो सत्रे आओ स्टार्ट ही एची वर्तमान डायलिंग लाइव चिटचंडेर फोंडेर म्यूजिकल हमशर पर विश्वजीत अछि आपनक सहित रेडियो पखरे मु आ रेडियो सब कर आपन माने शीघ्र शीघ्र फोन उठांतु आ डायल कर दियंतु 0671-230-3153 कॉल आसी के पहुंचि जेबो मो पखरे कोन कथा बा आज हमें कॉल रे आज कथा आज आमे संडे को सुंदर करिवार बेस्ट प्लान आपणक मतरे कोन हे पारे ए जो संडे

0: ये जो पल है इसको खास बनाना है, और अगर पल ये संडे का हो तो उसको ज्यादा खास बनाना है। वेलकम बैक टू क्वेश्चन 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो डायल इन लाइव चिटचैट रे। आज हमें कथा हो जे संडे को काटी बार बेस्ट प्लान कौन है परे को वेरे रविवार को हमें काटिले रविवार टे के सुंदर हबा। आपण माने आपण को मत दउचंती। आज जे आ गुटे कॉल देखिबा की करचंती कोठु करचंती आ सी कोन कहउचंती संडे को केमिति काटिले संडेटा सुंदर हे परिबो। हेलो नमस्कार, की कोथले कोठु कोथले
1: नहीं नुवा बजे तो ममता बेरा
0: को आगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हैव अ ब्यूटीफुल संडे। कोन कहिबे संडे को केमिति काटिले संडेटे के सुंदर हेज परियो।
1: अच्छा भाई, हमर तो मास को गट्टे छुट्टी मास सस संडे हमर गट्टी छुट्टी।
0: अच्छा
1: आ से छुट्टी रे आ हमें कौन ये करो ना घर द्वार सफा सुतरा झड़ा पोछा।
0: अच्छा स्पेशल प्लान
1: गोटे
0: संडे मिलुची सेलिब्रेट कले संडे सुंदर भाव कटि पार बोली कौन भावुचंदी आपण मत
1: गोटे दिन जेहेतु मिलुची आम तो टाइम हो ना आगे मो मतरे आगे घर को क्लीन करू टाइम पाइले
0: संडे मास शेष संडे ही छुट्टी तो हेटिक हेजा प्लान करिवा से कहले जे संडे रे घर फर सफा सफी करिवा दरकार एवं ता परे टिके समय मिलले ताको टिके सेलिब्रेट करिवा पे बाहर को जाकी बुला बुली कले संडे टा कट परिबो। किंतु आपण कोंदु जदी आपण को गोटिए दिन संडे भी मिलुची और वीक रे गोटे संडे मिलुची ताको केमिति वे रे आमे कैलकुलेट करिकी डिवाइड करिकी ताको बहुत सुंदर करि परिबा आउ जहाँ फल संडे गोटे ब्यूटीफुल यूज मध्ये हेई परिबो। नमस्कार, की कहते कौटू कहते
2: सुमित कुमार
0: भाई। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कौन कहिबे संडे को केमिति कैलकुलेट करिकी प्लान करिकी स्पेंड कले रविवार टा भलो भाबरे कटिबो बोली आपनकर मत।
2: रविवार कौन ते खाइया पिया भलो टिके सकाळ होइ जइबो आउ रेगुडा धरिबो रेगुडा धरिकी टोटा को जाइके आते बोलारे
0: मजा लगे बढ़िया बढ़िया कथा भी जानवा को मिल नुआ नुआ कथा शिखा को मिल अनुभूति बहुत किसी शिखा को मिल भाव संडे टी बहुत सुंदर भाव कटिप
2: बहुत
0: मजा
2: थटा
0: मजार बहुत मजार जगह अच्छे कहते आंब तोटा कि नईकूल अच्छी स्कोप अच्छी बुला बुली कले भी रिलैक्स लगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कॉल करले आपनकर सुंदर मत आम सहित शेयर करले। रहिली भाई नमस्कार। साथी सांगिर थिबो एफएम रेनबो आउ ता सहित तास खेलर आसर जमुथिबो किमा जे कोनी से खेलर आसर जमिथिबो एवं नेचुरल फ्रेश जदि पाखरे किछ अछि तार ठंडा ठंडा पवन आंब तोटा किमा नई कुळ एफएम रेनबो एवं ता सहित संडे रो मॉर्निंग एवं जदि बॉयस को लोक माने अछन्ती सांग साथी माने अछन्ती तांक सहित टिके कथोप कथन वार्तालाप खटी मजा एई भाबरे संडे को काटिबा पई जणे भाई वर्तमान देले मत। आपण कोन देबे मत आपणकर कोन अछि मत देखिबा आउ जणे कॉल आसी देखिए किए कर संडे मत।

0: जय जगन्नाथ नमस्कार
1: नमस्कार भाई जय जगन्नाथ बहुत सुंदर गीत स्टार्ट कले परिचय दे दिखे सब श्रोता बंधु मान
0: रेडियो लगर नारायण प्रधान ब्रह्मपुर बुगुड़ा जिला गंज
1: नारायण भाई केमती कौन रविवार को अतिवाहित कले रविवार सुंदर हो पार
0: देखु रविवार बर्तमान जो प्रकार गरम हो सब कोई भल कथ वाटर पार्क हो कि ननकानन जी समस्त सांगसाथी बुलवा बुझे अच्छी दिन की भल सुरक्षा कटो वाटर पार्क मजा गोटे निरा
1: बढ़िया कथा टी कहले वाटर पार्क गोटे नुआ कनसेप्ट जो फैमिली सहित स्पेंड कर पारे समय एवं थंडा थंडा पाग थंडा थंडा लगे पानी भितर बहुत सुंदर कथा कहले भाई आउ कौन हो पारे वाटर पार्क नंदनकानन छड़ा जो मैंने घर अच्छा जा पार ना
0: बणभोजी बर्तमान बणभोजी कर हाँ
1: ना गरम जो भाया हूँ से बणभोजी भितर निजे बण भितर सीझी जाइवा आम बहुत बहुत धन्यवाद नारायण भाई कॉल कले आप मत बहुत नमस्कार साथी ये आम श्रोता बंधु मान आज मत समय के चली गला कथा हो जना पड़ानी समय इशारा देखी कहला बेटा बस उतना ही टाइम था हमारे पास डायल इन लाइव चिटचाट का आपण मान सहित बहुत सुंदर भाव में मत विनिमय है बहुत श्रोता बंधु मान कमन कथ कहले कि लोक कि नुआ कथ कहले कि लोक संपर्क को प्राधान्य देवा कथ कहले कि जन मत था स्पिरिचुअल वे रे कटु आज दिन एवं संपर्क स्पिरिचुअल सफा सफी स्वच्छता उपर गुरुत्व देवार दिन हो घरे रहीबार दिन हो खाइबा पीबार दिन हो सहित कि बुलाबूली कर मत आसा संडे को विभिन्न उपाय आम बेस्ट कर बहुत गुड ऑप्शन आपण साथी पाई जाइथिबे आम श्रोता बंधु मानक पाकुर ताले आपण को ऊपर वर्तमान संडे को केमिति ब्यूटीफुल करिवे संडे को केत्ते सुंदर भाव रे प्लान करके सेलिब्रेट करिवे भलो भाव रे संडे को काटिबे तार दायित्व आपण मानक ऊपर डिसाइड करंतु आपण ताले आमे त आमे काम कर दिछु समस्त कर मत आपण को पखरे पहुंचे दिछु तबे साथी वर्तमान समय इशारा देखिए कहलाणी रेनबो एसएमएस को स्टार्ट करने को पड़ो आपने शीघ्र फोन उठे दिंतु आपण मान फरमाइश रीत आमको पठे दिंतु नंबर हूँ 09495963210 एसएमएस करने व्हाट्सएप कनेक्ट हवाक 8895254200 नंबर में आमको करेंगे डायरेक्ट व्हाट्सएप मेसेज आपण मेसेज जरिया जन पारे कौ गीत शुणा चाहती क्या डेडिकेट करने चाहती से गीत शीघ्र शीघ्र फोन उठातु आई क्षण भितर स्टार्ट करने रेनबो एसएमएस कार्यक्रम स्टे ट्यून्ड
2: सावित्री मो ऑफिस जाउछि
3: निया ए मासर इलेक्ट्रिक बिल भरी दबो
2: बापरे इत्ते टोका
3: मु तो कहूची सोलर पैनल लगे दबा मासुकु 300 यूनिट पर्यंत बिल बंची जीवो
2: सेथिरे केते खर्च हेबो जानिछ
3: काई चिंता करूछ सरकार सेथि पे सब्सिडी देउछंती परा
4: आके हां पीएम सूर्य घर योजना रे केंद्र और राज्य सरकार मोट 1,38,000 टंका पर्यंत सब्सिडी देउछंती पीएम सूर्य घर .gov.in रे आज ही आवेदन करंतु

वेलकम बैक अगेन ट्यून कर चंदी 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो को चंदी दिल से दिल तक रेनबो एसएमएस सिलसिला स्टार्ट ही चर्चा अपन मन को एसएमएस को अपन मन को फरमाइश को पूर्ण करिवार कथा म्यूजिकल हम सब पर विश्वजीत अच्छी रेडियो पाकरे अपन मन कर एसएमएस अपन मन कर मैसेज केमिति आसीबो हम पको को कहि दो छ आउ थरे एसएमएस करबा को हेले निजरो फोन रे एसएमएस बॉक्स को जिबे एफ

RMRC टाइप करिबे एवं ता परे लिखि देबे को गीत सुनिबा पई चाहुचंदी काहा को डेडिकेट करिबा पई चाहुचंदी से गीत ता परे निजो ना ठिकाना सहित पठे देबे हमर नंबर 09495963210 रे जदि करिबा पई चाहंती व्हाट्सएप तबे 88895 नंबर होछि हमर कर दे परिबे हमको व्हाट्सएप रे डायरेक्टली मेसेज तबे वर्तमान दुईटी बैक टू बैक गीत फरमाइश आसी सारी छे हम पखुकु तो चलू गीत बॉर्डर रु गुड मॉर्निंग सहित सुनबा पई चाहिजंती समीर खटुआ नरसिंहपुर केंद्रापड़ा रु फर्स्ट तांकर मनपसंद सुंदर गीतटी बजे दबा एवं परे परे आउ गुटे सुंदर गीत सुनबा पई चाहिजंती हस्ते हस्ते कट जाए रस्ते ए सुंदर गीत रु सुनबा पई चाहिजंती प्रेमानंद महापात्र रामचंद्रपुर दुर्गापुर बांकी कटक रु एवं जणैचिन समस्त को गुड मॉर्निंग बैक टू बैक ए दुईटी गीत आपण मानक पाए।

इधर गीत को सुनवा पाई चाहिए। छत्तीसगढ़ से आया है ये मैसेज, लिख रहे हैं हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखिलाल वर्मा, सुनना चाहते हैं आखिर क्यों फिल्म का ये प्यारा सा गीत एक अंधेरा लाख सितारे। निश्चित भावरे आपण मन को पाई ए ब्यूटीफुल गीतटी वाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखिलाल वर्मा, आप सभी को डेडिकेट करके ये प्यारा सा गाना आपके लिए प्ले कर देता हूँ। 100.4 आकाशवाणी FM रनमे, आप सुनते रहिए और बोलते रहिए दिल से दिल तक। तो साथी आउ गोटे सुंदर गीतर फरमाइश आसी जहाँ मेसेज करके आमको लिखी जितेन्द्र नियाड़ी माधव रु एवं लिखुचंदी सुनिबा पई चाहिचंदी से ये जवानी है दीवानी रु सुभान अल्लाह। ब्यूटीफुल ट्रैक, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक, बैक टू बैक ए दुटी ब्यूटीफुल ट्रैक आपण मानको पई।

0: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଲାଣି ସାରା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡିବ ରେନ୍ବୋ ସେମେଷ୍ଟର ସିଲସିଲାକୁ। ପୋଷ୍ଟ ବକ୍ସ ନମ୍ବର 111 ଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में उल्लेख किया था फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों का। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को प्रेरित किया कि हम वन्य जीवों के बारे में जानें, इन पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए क्या प्रयास हो रहे हैं इसके बारे में जानें। तो आइए, हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वही हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का उल्लेख किया है।
2: साथियों, पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकृति के संरक्षण की प्रेरक कहानियां सामने आई हैं। ये कहानियां हमें उम्मीद देती हैं और गर्व से भर देती हैं। मैं मन की बात के श्रोताओं से कुछ उदाहरण साझा करना चाहता हूं। इनको सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। पहले बात कच्छ के रण की। बरसात खत्म होते ही यहाँ की धरती जीवंत हो जाती है। हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहाँ आते हैं। पूरा इलाका गुलाबी रंग से रंग जाता है, इसलिए इसे फ्लेमिंगो सिटी कहा जाता है। ये पक्षी यही घोंसले बनाते हैं और अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। कच्छ के लोग इन्हें लाखा जी के बाराती कहते हैं। अब लाखा जी के बाराती कच्छ में पर्यावरण संरक्षण के बड़े सुंदर प्रतीक बन गए हैं। साथियों, दूसरा किस्सा इंसान और वन्य जीवों के सहयोग का है और ये उत्तर प्रदेश से है। यहाँ के तराई इलाकों में फसल के समय हाथियों के झुंड गांवों की ओर आते हैं, इससे टकराव की आशंका बढ़ती है। लेकिन अब यूपी में भी गज मित्र जैसे प्रयास शुरू हुए हैं। गांव के लोग ही टीम बनाकर हाथियों पर नजर रखते हैं। वे समय रहते लोगों को सतर्क करते हैं। इससे टकराव कम हो रहा है और लोगों में भरोसा बढ़ रहा है। साथियों, मध्य भारत से भी एक अच्छी खबर आई है। छत्तीसगढ़ में

0: ब्लैक बक यानी काले हिरण फिर से दिखाई देने लगे। एक समय इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, लेकिन लगातार प्रयास हुए और संरक्षण बढ़ाया गया। आज ये फिर से खुले मैदानों में दौड़ते नजर आते हैं। ये हमारी खोती विरासत की वापसी है। ऐसे ही उम्मीद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण के संरक्षण में भी दिख रही है। ये पक्षी हमारे रेगिस्तानी इलाकों की पहचान हुआ करती थी, लेकिन एक समय इसकी संख्या बहुत कम रह गई थी। हालत ये थी कि ये पक्षी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन अब इसके संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं और अब नए जीवन की शुरुआत दिखाई दे रही है। साथियों, प्रकृति और मानव अलग नहीं है, हम एक दूसरे के साथी हैं। जब हम प्रकृति को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसके साथ मिलकर चलते हैं, तो बदलाव साफ दिखाई देता है। आज यही बदलाव देश के कोने कोने से नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है।
1: प्रधानमंत्री जी के इन प्रेरक शब्दों के बाद आइए जानते हैं कि इन वन्य जीवों की, इन पशु पक्षियों की जीवन शैली कैसी होती है और इनके संरक्षण के लिए क्या विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। हम आपको सुनवा रहे हैं एक परिचर्चा। हमारे विशेषज्ञ हैं श्री जयपाल सिंह, भारतीय वन सेवा अधिकारी, अग्र मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, वन विभाग गुजरात राज्य से, और श्री आयुष वर्मा, जिला वन संरक्षक, कच्छ ईस्ट डिवीजन, वन विभाग गुजरात राज्य। इनसे बातचीत कर रहे हैं श्री हितेश मावाणी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी।
2: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 अप्रैल 2026 मन की बात में गुजरात, कच्छ और खास करके उन्होंने फ्लेमिंगो सिटी, फ्लेमिंगोस और साथ ही में द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको यहाँ गुजरात में घोराट के नाम से जाना जाता है, वो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में जिक्र किया था, उल्लेख किया था। आज उसी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में गुजरात राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और साथ ही में गुजरात राज्य वन बल प्रमुख डॉक्टर जयपाल सिंह उपस्थित है और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा भी उपस्थित है। तो सबसे पहले तो आकाशवाणी की ओर से आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में उपस्थित रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत।
3: नमस्कार श्रोता मित्रों।
2: डॉक्टर जयपाल सिंह, सबसे पहले तो हम बात यही करेंगे कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने मन की बात में फ्लेमिंगो सिटी का जिक्र किया, साथ ही में फ्लेमिंगोस के बारे में भी बताया। तो सबसे पहली बात यह है कि उन्होंने अपने वक्तव्य में फ्लेमिंगोस को लाखा जी के बाराते ऐसा शब्द से नवाजा था, तो ये लाखा जी के बाराते क्या है सर?
3: जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कच्छ प्रदेश प्रवासी पक्षियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ लाखों की संख्या में फ्लेमिंगो, जिसको सुरखाब भी हम लोग कहते हैं, आते हैं हर वर्ष और यहीं पे अपना प्रजनन करते हैं। वहाँ पे एक एक पूरा जो है अंडा देके बच्चे पैदा करके और बच्चे बड़े होने तक कच्छ में रहते हैं। और जब ये सुरखाब मीन्स फ्लेमिंगो जब ये कच्छ के रण में जब आते हैं तो वो पूरा कच्छ की धरती एकदम गुलाबी और सफेद रंग से भर जाती है। तो उसी को देखते हुए जो हमारे यहाँ के जो भरवाड़ लोग हैं, जो पशुपालक हैं, उनकी एक जो ड्रेस होती है वो व्हाइट कलर की ड्रेस होती है और उसमें जब उन बारात के टाइम में, शादी ब्याह के टाइम में जब वो गुलाल वगैरह छिड़कते हैं तो पूरा गुलाबी और व्हाइट का एक कम्बिनेशन होता है। उस कम्बिनेशन को देखते हुए यहाँ इनको लाखा जी के बाराती कहकर भी बुलाया जाता है।
2: ये तो बहुत खूबसूरत बात है, फ्लेमिंगोस को यहाँ गुजरात में लाखा जी के बाराती के नाम से भी नवाजा जाता है। डॉक्टर जयपाल सिंह, सबसे पहले तो प्रश्न ये आता है कि ये जो सुरखाब फ्लेमिंगोस की आपने बात बताई, तो गुजरात के सिर्फ ये कच्छ जिला में ही आते
3: हैं? नहीं, एक्चुअली जैसे हम जानते हैं कि ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, जो मध्य एशिया का पूरा फ्लाईवे है, तो प्रवासी पक्षी पूरे साइबेरिया और रशिया और इधर से पूरे मतलब सीजन के हिसाब से माइग्रेट करते हैं। तो

माइग्रेटरी रूट का एक ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है और पूरा जो एक अनुकूल वातावरण भी कच्छ के पूरे रण क्षेत्र में रहता है और जैसा कि हम लोग देखते भी हैं कि बहुत पक्षीविद भी यहाँ आते हैं, ऐसे डॉक्टर सलीम अली भी यहाँ बहुत टाइम पर तक रहे और अभी भी सर्दी के टाइम में जब प्रवासी पक्षी और ये सब रहते हैं तो पूरे कंट्री से पूरे देश से बहुत सारे पक्षीविद और जो जिनको बर्डिंग में रुचि रहती है वो यहाँ आते हैं। तो ये एक इनका एक टेम्परेरी रुकने का एक स्थल है कच्छ का रण, उसमें ऐसी अनुकूल परिस्थितियां है, हैबिटेट ऐसा है तो काफी टाइम तक यहाँ रहते हैं और खास करके जब ये फ्लेमिंगो आते हैं तो उनको ब्रीडिंग के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्राउंड यहाँ पे उपलब्ध है जो पूरे दक्षिण एशिया में कहीं नहीं है। वो यहाँ पे ऐसा एक पूरा ब्रीडिंग ग्राउंड है और यहीं आके ये ब्रीडिंग करते हैं और ये पूरा जो माइग्रेटरी रूट है वो हिंद महासागर तक जाता है, उसमें देश के अन्य भागों में भी ये जाते हैं पर बहुत ज्यादा समय जो कच्छ के रण में ये रहते हैं और गुजरात के अन्य भागों में भी ये जैसे नड़ा बेट का विस्तार है उसमें रहते हैं, फिर लिटिल रन

0: अपने यहाँ पे गुजरात में खूब सारी वेटलैंड्स हैं और जो जो वेटलैंड्स में अनुकूल वातावरण इनको रहता है वो सभी में ये समय समय पर जाते हैं। तो कुछ समय कच्छ में रहेंगे, कुछ दूसरे भागों में जाएंगे, देन अपने माइग्रेटरी रूट के हिसाब से आगे जाते रहते हैं एंड देन जब रिटर्न होते हैं तो भी उनका वही सेम रूट रहता है।
1: आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कच्छ के भाग में ये विशेष करके आते हैं फ्लेमिंगोस माइग्रेटरी बर्ड्स। कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: डॉक्टर जयपाल सिंह का कोई पर्टिकुलर सीजन रहता है इनके यहाँ कच्छ में और गुजरात के अन्य भाग में जो माइग्रेटरी बर्ड्स रुकते हैं, खास करके फ्लेमिंगोस?
1: हाँ, ये बड़ा एक स्पेसिफिक सीजन रहता है यहाँ। जैसे अभी हम लोग देखेंगे गर्मी की ऋतु में यहाँ पे पूरा रण जो है वो सूखा होता है, उसमें एक सोल्ट पेन जैसा रहता है पूरा, और जैसे ही बारिश होती है तो वो पूरा रन जो है एक पानी से भर जाता है, जो छिछरा पानी होता है, बहुत गहरा पानी नहीं रहता है, और वो छिछरा पानी जो है वो इसके फ्लेमिंगो के रुकने के लिए खूब अनुकूल है, और उसके ब्रीडिंग के लिए आसपास में जो मिट्टी के कुछ टीले वगैरह होते हैं और एक ऊपर का जो भाग है वो बहुत अनुकूल होता है, इसलिए जो है ये इस एरिया में आके रुकते हैं। और खूब बड़ा प्रदेश जो इनको मिल जाता है, बड़ा क्षेत्र मिल जाता है जिसमें अनडिस्टर्ब मीन्स वहाँ पे कोई दूसरे व्यवधान नहीं है, कोई दूसरी मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज भी नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई घर और गांव नहीं है, ऐसा एक बड़ा सुंदर वातावरण का निर्माण यहाँ पे रहता है, तो उस वजह से ये यहाँ के रुकते हैं।
0: तो डॉक्टर जयपाल सिंह, आपने जैसे बताया कि उसको एक बहुत सुंदर वातावरण मिलता है, तो ये जो इनका नेस्टिंग ग्राउंड है वो मतलब कितने एरिया में फैला हुआ है?
1: ये तो ऐसे कहेंगे तो हम लोग जैसे कि ये तो हजारों हेक्टेयर विस्तार में है पूरा जो नेस्टिंग ग्राउंड और जहाँ आके रुकते हैं, और जो मतलब सैकड़ों हेक्टेयर विस्तार ऐसा है जिसमें ये आके अंडे देते हैं, और जैसे ही बारिश शुरू होती है उसके बाद इनका आना शुरू हो जाता है जुलाई अगस्त से, फिर अपना अंडा देते हैं, फिर बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो अक्टूबर नवंबर तक बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, और देन ये फिर जो है आगे माइग्रेट करना शुरू करते हैं अलग अलग जगह।
0: जैसे कि आपने बताया कि ये माइग्रेटरी बर्ड्स है, तो मतलब इनका माइग्रेशन रूट कितना रहता है?
1: माइग्रेशन रूट तो इनका हजारों किलोमीटर होता है, जैसे साइबेरिया से आते हैं और पूरे जो है अपने हिंद महासागर के क्षेत्र तक जाते हैं, इवन चिल्का लेक और इस एरिया तक भी ये जाते हैं, और पूरे साउथ इंडिया में भी इनका विस्तरण रहता है, तो ये पूरा एक माइग्रेटरी रूट काफी बड़ा इनका माइग्रेटरी रूट है।
0: श्रोताओ, हमारे साथ साथ आकाशवाणी स्टूडियोज में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित है। आयुष जी, आप बताएंगे कि कच्छ में कौन कौन से लोकेशन में फ्लेमिंगोस सुरखा में वो पाए जाते हैं, पॉपुलेशन उसकी पाई जाती है?
2: नमस्ते श्वेता मित्रों, कच्छ एक अनुकूल प्रदेश है फ्लेमिंगो के लिए, एंड जैसा साहब ने बताया भी तो यहाँ काफी विस्तृत विस्तार में ये मिलते हैं, बट जो अभी जो मेन ट्रेडिशनल एरिया की अगर हम बात करें तो एक फ्लेमिंगो सिटी करके जगह है जिसको अंडा बेट के नाम से भी कहते हैं, उसे पिंक सिटी भी कहते हैं, एंड ये डिस्कवर किया गया था सन 1886 में, उस समय के जो महाराजा थे उस टाइम पे उन्होंने वो डिस्कवर किया था,
0: कच्छ के महाराव ने
2: जी, फिर माराव खेंगा थ्री इनफैक्ट टू बी मोर स्पेसिफिक, एंड डॉक्टर सलीम अली साहब ने फिर 40 और 50 के दशक में यहाँ पे काफी भ्रमण किया और उन्होंने देखा कि ये एक नायाब जगह है फ्लेमिंगो के लिए। उसके अलावा अभी हाल में कूडा करके एक जगह है, वहां पर इनका काफी डिपार्टमेंट ने भी इंटरवेंशन किया जिसकी वजह से वहां सक्सेसफुल इनका प्रजनन होता है, जिसकी वजह से वहां पे भी असंख्य मात्रा में देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट प्रवासियों के बारे में मैं बात करूं तो जब हम रोड टू हेवन से प्रसार करते हैं तो उसके दोनों तरफ फ्लेमिंगो जो मौसम होता है तो देखने को मिलते हैं।
0: सबसे पहले तो श्रोता को हम बताएंगे कि ये रोड टू हेवन क्या है।
2: जी, रोड टू हेवन हमारा खावड़ा वाले एरिया से जो ढोलावीरा को कनेक्ट करता हुआ एक एक्चुअली एक रोड है जिसे कहते हैं रोड टू हेवन, या फिर कह सकते हैं रोड ऑफ हेवन। इसके जैसे नाम से ही प्रस्तुत होता है तो ये कहते हैं कि जन्नत की सैर आप कर रहे हैं। ये इसका महत्व इसीलिए है कि आप देखिए जिस समय पानी सूखा हुआ होता है तो नमक की एक सफेद चादर होती है, आपको लगेगा जैसे आप आकाश में विचर रहे हैं। जब पानी भरा होता है तो यहाँ पे विभिन्न माइग्रेटरी बर्ड जिसमें मुख्यतः आपका फ्लेमिंगो सुरखाब वो होता है, तो सफेद और गुलाबी रंग से वो पूरा का पूरा ढक जाता है, तो ये देखने में क्योंकि इतना बेहतरीन

0: लगता है, इतना मोहक लगता है, इसीलिए इस रोड से प्रसार करते समय लोगों से कहते हैं कि रोड टू हेवन है।
1: और साथ में हम ये भी बता दें कि ये रोड टू हेवन है वो अभी अभी ही मतलब पिछले 4-5 साल से ही पब्लिक के लिए ओपन किया गया है, जिसके दोनों साइड समंदर का पानी भरा हुआ रहता है। और जैसे कि आयुष वर्मा जी ने बताया, तो जब आप ट्रैवल करते हैं धोलावीरा से खावड़ा, तो ये आपको लगता है कि इट्स ए रोड ऑफ हेवन। आयुष जी, आपने ये बताया तो हम श्रोता मित्रों को साथ में ये भी बताया, एक बार जो उसका फ्लेमिंगोज है उसका नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना हो सकता है?
0: जी, अगर मैं कच्छ की खाली बात करूं तो पिछले 5 वर्ष में जो हमारा एक अनुमान है वो ये है कि 3 से 4 गुना फ्लेमिंगो की संख्या बढ़ गई है, एंड हाल में ये संख्या अंदाजित 3 से 4 लाख, हम बहुत ही कंजर्वेटिव एस्टिमेट से भी इसको कह सकते हैं। यही संख्या जस्ट 2020 में 1 लाख के आसपास थी। और ये भी गौरतलब है कि जब ये फ्लेमिंगो की हम बात करते हैं तो दोनों ग्रेटर फ्लेमिंगो एज वेल एज लेसर फ्लेमिंगो दोनों यहाँ पर आते हैं।
1: अच्छा आयुष जी, तो ये ग्रेटर फ्लेमिंगोस और लेसर फ्लेमिंगोस, इसमें मतलब डिफरेंस क्या है, तफावत क्या है?
0: जी, तो आपको अगर मैं फिजिकल डिफरेंसेस से बताऊं तो सर्वप्रथम तो जैसे ग्रेटर और लेसर है तो साइज में फर्क आपको दिखेगा। जनरली जो एक एडल्ट ग्रेटर फ्लेमिंगो है उसकी हाइट होती है 110 से लेके 150 सेंटीमीटर एवरेज, जबकि हमारा जो लेसर फ्लेमिंगो होता है वो 70 से लेके 95 सेंटीमीटर तक का होता है। तो एक तो साइज में डिफरेंस होता है, दूसरा लेसर फ्लेमिंगो जो है आपका वो काफी गुलाबी दिखेगा एज कम्पेयर टू ग्रेटर फ्लेमिंगो। ग्रेटर फ्लेमिंगो भी गुलाबी है लेकिन वो सफेद और ग्रे कलर का ज्यादा है। इनफैक्ट ये भी एक मजेदार बात है कि ये उनका बॉडीली अडेप्टेशन है। कैसे? एक ये जो हमने बात करी कि रण क्यों सूटेबल है, तो जैसा हॉफ साहब ने बताया यहाँ पर शैलो वाटर तो है, शैलो वाटर की वजह से क्या होता है, एल्गे, क्रस्टेशियंस, डायटम्स, और ये उनकी मेन खुराक बनती है फ्लेमिंगोज की। जो हमारे लेसर फ्लेमिंगोज होते हैं वो सरफेस फीडर्स होते हैं, स्पेशली जो ब्लू ग्रीन एल्गे है उसको कंज्यूम करने की वजह से इनका जो कलर है वो गुलाबी आता है। जबकि जो हमारे ग्रेटर फ्लेमिंगोज हैं वो वेडर्स होते हैं, यानी वो पानी के थोड़ा सा अंदर सतह से जाके उनकी डाइट रहती है। तो ब्लू ग्रीन एल्गे के अलावा वो क्रस्टेशियंस भी कंज्यूम करते हैं, बट जैसा मैंने साइंटिफिकली बताया कि उनका जो कोट का कलर है गुलाबी वो ब्लू ग्रीन एल्गे की वजह से आता है। तो लेसर फ्लेमिंगो इसको ज्यादा कंज्यूम करती है और ग्रेटर फ्लेमिंगो इसको कम कंज्यूम करती है। तो आप देखिए प्रकृति में कैसे एक वातावरण से हमारी पूरी मतलब हमारी तो है साथ साथ पक्षियों की भी एक पूरे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होते हैं।
1: मतलब सर ये तो हम बोल सकते हैं कि ये तो एक कुदरत का करिश्मा ही है जिसे ये लेसर फ्लेमिंगोस और ग्रेटर फ्लेमिंगोस है, उसका एक फिजिकल आइडेंटिफिकेशन अलग अलग रहता है। डॉक्टर जयपाल सिंह, ये जो बताई फ्लेमिंगोस सुरखाब की संख्या, तो ये सुरखाब की संख्या उसका पॉपुलेशन एस्टिमेशन काउंट के पद्धति कौन कौन सी रहती है?
2: ये जैसे फ्लेमिंगो को जो बर्ड सेंसस का भाग हम लोग मानते हैं और वो मोस्टली जो है डायरेक्ट काउंटिंग होता है, उसमें काफी सारे इक्विपमेंट भी हम लोग यूज करते हैं और उसमें बहुत सारे जो पक्षीविद हैं उनको हम लोग साथ में रखते हैं, साथ में बहुत कुछ एनजीओज रहते हैं, कुछ हमारे बर्डर्स रहते हैं जो इसका मतलब कंटिन्यूअसली हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, उनको साथ में रख के हम उसका डायरेक्ट काउंटिंग करते हैं। पर जैसा कि हम देखें कि एक एक को काउंट करना तो बड़ा मुश्किल होगा, बट उसको हम जैसे इक्विपमेंट्स के माध्यम से उसके कुछ सैंपल करके और उनको देन मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं तो अंदाजित उसकी जो संख्या है उसका हम लोगों को पता चल जाता है।
1: तो श्रोताओ, फ्लेमिंगो सुरखाब के विशेष जानकारी तो हम आपको देते रहेंगे, लेकिन साथ साथ हमें डॉक्टर जयपाल सिंह आप अपनी पसंदगी का एक गीत भी बताइए।
2: जैसे रहे ना रहे हम महका करेंगे, ये एक बड़ा सुंदर गीत है।
1: बिल्कुल, प्रस्तुत है स्वतः आपके लिए डॉक्टर जयपाल सिंह की पसंदगी का यह गीत।

0: कॉस्मोक्स नंबर 111 इस कार्यक्रम को आगे जारी रखते हुए डॉक्टर जयपाल सिंह से हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सुरखा फ्लैमिंगोस की पॉपुलेशन एस्टिमेशन होती है तो उसमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं गवर्नमेंट के अलावा?
1: जैसे मैंने बताया कि हमारा स्टाफ तो उसमें रहता है, पर उसमें जो काफी सारे पक्षीविद हैं, काफी जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं वो सब, और बहुत सारे बर्डर्स हमारे गुजरात में खास करके बहुत बड़ा बर्डिंग कम्युनिटी है जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, तो जिनको काफी रुचि रहती है पूरी बर्ड लाइफ में, तो वो साथ में रह के हम लोग एक अपना प्लान करते हैं, फिर उन सबको इनवाइट करते हैं, उनको सबके साथ रह के वो एक जो इनकी गिनती पक्षियों की है उसका कार्य हम लोग करते हैं।
0: डॉक्टर जयपाल सिंह, ये फ्लेमिंगोस के पॉपुलेशन सेंसस हर साल होता है या कोई पीरियडिकल रहता है?
1: वैसे तो हम लोग हर 4 साल में एक बर्ड सेंसस का आयोजन करते हैं, परंतु अलग अलग

0: से भी हर साल वो पक्षी गिनती करने का कार्य करता है, जैसे कि नड़ावेट विस्तार है उसमें अलग से अपना स्टाफ जो है वो एक अपना गिनती का कार्यक्रम रख लेता है, इसी तरह से नल सरोवर में रख लेता है, तो उससे पक्षियों की संख्या का अंदाजा हम लोगों को आता रहता है और डिफरेंट जो वैरायटी के बर्ड्स हैं उनकी भी संख्या का पता चलता रहता है। तो कभी कभी जैसे नल सरोवर जैसे विस्तार में कुछ अन्य विलक्षण पक्षी भी देखने को मिल जाते हैं जो जनरली माइग्रेट करके आए होंगे, पहले नहीं देखे गए हैं, बट कभी पिछले साल में भी ऐसे एक दो पक्षी देखे गए थे और फिर नेक्स्ट ईयर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि वही सेम पक्षी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
1: आयुष जी, जैसे कि आपने बताया कि जो कच्छ के महाराव थे महाराजा खेंगार जी, उन्होंने विश्व के समक्ष ये फ्लेमिंगो सिटी अंडा बेट का उजागर किया, ऐसे ही फिर बाद में सलीम अली जी ने भी जिक्र किया फ्लेमिंगोस का। तो मतलब जो एक ये पूरा नेस्टिंग कॉलोनी का एक फोटोग्राफ विश्व में प्रसिद्ध हुआ था
2: जी,
1: उसके बारे में आप बात करेंगे
2: जी। तो ये जब फोटोग्राफ पॉपुलर हुआ, आज के शब्दों में बोले शब्दावली में जब वायरल हुआ, तो लोगों में काफी उत्सुकता जागी कि ये यहाँ पर है तो क्यों है और क्या फैक्टर्स हैं जो इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में यूं तो मतलब ये सब चीजें क्या है आप देखिए, तो ये जो टेक्स्ट बुक्स में चीजें थी वो लेसन अभी आम जनता के समक्ष एक आ पाता है इसकी वजह से। अगेन इससे ये भी था कि जब यहाँ पे संख्या ज्यादा देखने को मिली तो इसको और कैसे बढ़ा सके, इनके कंजर्वेशन के लिए हम काम क्या कर सकते हैं, ये एक डिपार्टमेंट के लिए मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी तरीके थी। तो इसी चीज से प्रेरणा लेके मैं आपको बताना चाहूंगा कि कूडा करके एक हमारा स्थल है, इनफैक्ट उसको एक कुदरती संरक्षण ऐसे भी मिलता है कि वो हमारे कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का तो पार्ट है ही, साथ ही साथ बीएसएफ का एक आउटपोस्ट है जो उसके आगे है। तो एक एंथ्रोपोजेनिक डिस्टर्बेंसेस मतलब मानव से थोड़ा सा वो आइसोलेटेड है, वहां पर हमने पिछले 5 वर्षों से डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है कि हम वहां पे अर्दन माउंड्स बनाए और ऐसे प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर जो फ्लेमिंगो है वो अपना अंडा ले डाउन कर सके। मैं जस्ट एक उल्लेख करना चाहूंगा कि यहां पर इवन दो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में लाई करते हुए इंडिया में बहुत सारे पार्ट हैं, थाने में हमारा फ्लेमिंगो की काफी सारे देखने को मिलती है, काउंट पुलिकेट लेक में आपका, उड़ीसा में भी देखने को मिलता है, बट जो ब्रीडिंग है वो यहाँ कच्छ में काफी ज्यादा संख्या में होती है। हमने इसमें एक चीज ये देखी वहां पर कि अंडे जो ये ले डाउन करते थे अपने, वो रण विस्तार में पानी भर जाने के कारण उस अंडे का धोवाण बहुत ज्यादा हो जाता था, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल उसका ब्रीडिंग नहीं हो पाता था।
1: मतलब जो कुदरती परिवर्तन के हिसाब से फ्लेमिंगोस के अंडा कम होते जा रहे थे,
2: मैं ये नहीं कहूंगा कम होते जा रहे थे, बट ये चौमासे के समय में जब यहाँ पे आते थे और अंडा ले डाउन करते थे तो वो अंडा धुल जाता था। अभी जब डिपार्टमेंट ने ये कुछ अर्दन माउंट्स बनाए, सी शेप ब्रह्म से डेजर्ट पॉन्ड कहते हैं, तो लीनियर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो इसपे वो जब अपना अंडा ले डाउन करते हैं वो अंडे का जो धोवाण है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रजनन बहुत सक्सेसफुल हो पाया है। तो एक बड़ा कारण है कि क्यों फ्लेमिंगो की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही है।
1: आयुष जी, जैसे आपने बताया कूडा साइट के बारे में, तो हम श्रोता मित्रों को ये भी बताएं कि ये कूडा एक ऐसा एरिया है जहाँ पर मानव बस्ती बिल्कुल नहीं है और उसको मतलब कुदरती संरक्षण मिल रहा है
2: जी।
1: आयुष जी, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम को हम चाहे रखेंगे, लेकिन साथ में आपकी पसंदगी का एक गीत भी आप बताइए।
2: छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा,

0: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कच्छ के फ्लेमिंगो सिटी लाखा जी के बाराते और उसके साथ ही साथ गुजरात में जिसको घोराड के नाम से जाना जाता है ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, उसका भी जिक्र किया था, उल्लेख किया था। तो उसके संलग्न माहिती के लिए हमारे साथ डॉक्टर जयपाल सिंह, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और गुजरात राज्य वन बल प्रमुख है, और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित है। डॉक्टर जयपाल सिंह, हम श्रोता मित्रों को ये बताएंगे कि जो अभी घोराड द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड है उसकी संख्या गुजरात में कितनी रह गई है, और जो एक IUCN की कैटेगरी होती है उसमें उसका क्या स्टेटस है?
1: श्रोता मित्रों, जो घोराड हम लोग गुजराती में कहते हैं उसको इंग्लिश में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, और राजस्थान में उसको गोडावन के नाम से भी जाना जाता है।

को रख दिया गया है क्योंकि जो है इसका प्रजनन कुछ कारणों से काफी कम हो गया था और संख्या लगातार घटती जा रही थी। जैसे हम यहाँ गुजरात की बात करें तो यहाँ केवल चार पक्षी जो केवल मादा हैं वही रह गए हैं और राजस्थान में इसकी संख्या अभी थोड़ी बढ़ गई है और अभी करीब करीब 150 से 200 के बीच में कुदरती वातावरण में ये पक्षी हैं। उसके लिए काफी सारे प्रयास भी राज्य सरकारों ने किए हैं केंद्र सरकार के सहयोग से। ये एक

0: प्राथमिकता का कार्यक्रम है कि ये क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक स्पीशीज है जो लुप्त होने के कगार तक पहुंची, उसको कैसे हम फिर से पुनर्वसन कर सकें और पूरे जो है जिस एरियाज में ये प्रजाति पाई जाती है उनमें फिर से ये प्रजाति दिखने मिले। दूसरा जो है कि ये एक जो जीआईबी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये एक काफी बड़े आकार का पक्षी होता है, बहुत ऊंची उड़ान नहीं भरता है और मुख्य रूप से ये घास के मैदानों में ही रहता है और इसका जो अंडा भी जो देता है वो भी ग्राउंड पे ही देता है, कोई पेड़ पे ये कभी नहीं चढ़ता है, वो ये घास के मैदान में रहेगा, वहीं प्रजनन होगा और वहीं से जो इसके बच्चे पैदा होके वहीं पे ये बढ़ेगा। तो जो दूसरे कुछ परिबल जो रहते हैं ऐसे क्षेत्रों में, उन परिबलों में थोड़ा सुधार हो तो इसकी प्रजाति को हम फिर से बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं, जो कि अब हम लोग हो रहे हैं।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, साथ में हम ये भी बताएं कि ये जो घुराड़ है इसकी संख्या दिन ब दिन क्यों कम हो रही है?
0: इसकी संख्या कम होने के काफी सारे कारण हैं, क्योंकि घास के मैदान काफी विस्तारों में कुछ कम हो गए तो जो हैबिटेट लॉस हम उसको कह सकते हैं वो हुआ, उसके साथ साथ जो है कुछ ऐसे परिबल के कुछ शिकारी प्राणी उस विस्तार में बढ़ गए, छोटे शिकारी जिनको कहते हैं कि जैसे गीदड़ है, तो फोक्स है, इस तरह के नेवला है, इवन जो थोड़े पक्षी शिकारी पक्षी हैं वो भी, तो उनके कारण भी जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनको थोड़ा खतरा रहता है और कुछ अन्य परिबल, बरसात का ज्यादा होना, चक्रवात वगैरह हैं, कुदरती अन्य परिबल भी इसके कारण है, साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके वो भी एक कुछ हद तक एक कारण होता है कि उससे डिस्टर्बेंस वो एरियाज में होता है तो वो भी एक उसका कारण होता है।
1: कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहेगा, अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

0: श्रोता मित्र हमारे साथ कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर फॉरेस्ट आयुष वर्मा भी जी उपस्थित है। आयुष जी, आप ये बताइए कि घोराड की जो संख्या है उसके बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्या क्या प्रयत्न है?
1: केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही प्रयासरत हैं कि हाल में जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हमारा घोराड़ है, जैसा साहब ने बताया, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो। तो एक ध्यान देवानी जो बात है कि अभी जो कच्छ में मौजूद घोराड़ हैं, ये सब मादा हैं, इसलिए इनका प्रजनन एक बड़ी समस्या रही थी टू स्टार्ट विद। इनफैक्ट ये एक नोंदनीय बात है कि सरकार के प्रयासों को आप इससे आकलन कर सकते हैं कि एक डेडिकेटेड ग्रेट इंडियन बर्ड सेंचुरी है हमारे। तो अभी यूं तो कई बार प्रयास किए गए हैं, बट अभी हाल में जंप स्टार्ट टेक्निक ब्रीडिंग की एक हमारी टेक्निक है जिसको हमने इसके प्रजनन के लिए उपयोग किया। इसमें इफेक्टिवली क्या होता है कि एक आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन से जो अंडा होता है वो अंडा राजस्थान से लाया गया और यहां पर जो मादा घोराड़ है तो उनसे उनको इंक्यूबेट कराया गया। और ये भी एक काफी दिलचस्प बात है कि एक मादा अपने अंडे को पहचानती है, इसीलिए हमें बड़ा केयरफुल रहना होता है कि बिल्कुल आइडेंटिकल दिखने जैसा अंडा रखा जाए और उसकी नॉलेज के बाहर रखा जाए।
0: आयुष जी, ये आपने बताया कि राजस्थान से अंडा लाया गया है, तो राजस्थान से अंडा लाने वक्त कौन कौन से सावचेतियां रखनी पड़ती है?
1: जी, ये बहुत ही क्रिटिकल एक एस्पेक्ट होता है टेक्निकली अगर हम बात करें, क्योंकि आप देखिए ये अंडे का जो हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, तो इसमें वेटरनरी डॉक्टर जो हैं वो पूरा सर्टिफाई करते हैं, वो ये भी बताते हैं कि किस परिस्थिति में इसको स्टोर करके लेके जाना है और किस परिस्थिति में इसे रिसीव करना है। इसका प्रॉपर पूरा जो वेटरनरी मेडिकल टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं, इसको बेचते समय भी और इसको प्राप्त करते समय भी। इनफैक्ट सीजेडए की काफी टेक्निकल गाइडलाइंस भी हैं इसके बारे में, तो हमें काफी इसमें सावधानी बरतनी पड़ती है हर तरीके से इसके लॉजिस्टिक्स में।
0: और जैसे कि आपने बताया कि मादा के पास जो अंडा है अपना वो हमें लेना पड़ता है और जो आर्टिफिशियली इंसिमिनेशन से प्राप्त हुआ है अंडा उसको रिप्लेस करना पड़ता है, तो स्वाभाविक है कि मादा के उसी वक्त अंडा के आसपास हाजिरी नहीं होनी चाहिए। तो ये कैसे फिजिबल होता है?
1: तो फील्ड स्टाफ बहुत पैनी नजर रखता है, बहुत लॉन्ग टर्म ऑब्जर्व भी किया जाता है कि उस जो हमारा घोराड़ है उसका पैटर्न क्या है, बिहेवियरल पैटर्न क्या है। जैसे वो एक स्थान से अभी जाके अपने घास विस्तार में जाए तो किस समय जाती है और वो कब लौटती है, तो ये सब विंडो बेसिकली विंडो ऑफ टाइम हमारे जो फील्ड का स्टाफ है उसने पैनी नजर रख के ये एक्सरसाइज करी।
0: ये तो काफी मतलब फील्ड स्टाफ के प्रशंसनीय बात आपने बताई। डॉक्टर जयपाल सिंह साथ में बताते हैं कि ये जंप स्टार्ट टेक्निक है, ये उसका इंडिया में प्रथम बार प्रयोग किया गया गुजरात में कच्छ में।
2: इसमें मैं फिर से थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि ये जो भारत

0: और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और खास करके दो राज्य सरकारें अभी ये हाल में राजस्थान और गुजरात इनका एक संयुक्त कार्यक्रम है और ये एक नेशनल प्रोग्राम तरीके भी लिया गया है। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पिछले साल शासन में जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की मीटिंग की थी उसमें भी इसको एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आगे बढ़ाने के लिए इस पे भार दिया था और उसी के तहत जो है ये कार्यक्रम को बहुत हम लोग सावचेती से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें दो तरह के जो प्रजनन कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, एक है कि कुदरती तरीके से कि इन सीटू ब्रीडिंग, तो इन सीटू में दो चीजें होती हैं, एक तो जो मतलब ब्रीडिंग नेचुरली जो हो रहा है इस विस्तार में जो भी विस्तार में उसको हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, उसको कंडीशन ऐसी दें कि जो बच्चे नए जन्मते हैं तो वो सर्वाइवल उनका बढ़े। और दूसरा मेथड है जो जंप स्टार्ट मेथड, ये भी एक टेक्निक है कि सीधा जो बच्चा जो है हम लोग जैसे आयुष ने बात किया कि अंडा हम लोग चेंज कर देते हैं तो वो नए जो बच्चा जो उससे पैदा होता है तो उसका सीधा वाइल्डिंग हो जाता है। अदरवाइज जैसे हम लोग प्रजनन केंद्र कृत्रिम में हम लोग करें तो उसको वाइल्डिंग करने में बहुत दिक्कतें आती हैं, जो उसका एक ह्यूमन इम्प्रिंट अगर उस पक्षी पे है तो वाइल्डिंग होना उसका बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये हम दो तरह के प्रयास है, उसका इन सीटू कंजर्वेशन भी चल रहा है और एक्स सीटू भी चल रहा है। एक्स सीटू में भी काफी अच्छी जो प्रयास वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। और जैसे बात करूं तो इसी साल में कुल नए अभी तक 14 बच्चे इसमें जन्मे हैं जो कृत्रिम प्रजनन केंद्र है उसमें और कुल संख्या अभी जो केंद्र में है 84 हो गई है। तो वो जो एक क्रिटिकल लेवल के जो पक्षी का हम लोगों को जरूरत है जिस तरह से ये कम होता जा रहा था, तो ये साथ में इस कृत्रिम के साथ जो हमारा प्राकृतिक के साथ में कृत्रिम प्रजनन भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो उसमें अभी एक अच्छा नंबर संख्या जो हमारे पास उपलब्ध है जो प्रयास हुए उनके कारण, और उसमें से भी कुछ जो नए बच्चे अभी जन्मते हैं तो उसमें जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रयास है कि सीधा उनको हम लोग वाइल्डिंग करें, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक SOP भी बनाया गया है। उसके लिए एक ऑलरेडी एक हम लोगों ने मतलब राजस्थान में कैसा सेंटर छोटा तैयार किया है कि सीधा उसको छोटे बच्चों को ही वाइल्डिंग कर दें। तो उस तरह के प्रयास जो मतलब प्राकृतिक के साथ साथ में जैसे गुजरात में आयुष जी ने बात किया कि हमारे पास जो पक्षी हैं वो केवल फीमेल है तो वो केवल इनफर्टाइल एग हर साल देती हैं, तो वो इनफर्टाइल एग को फर्टाइल एग से रिप्लेस करके उससे नए बच्चे पैदा हों वो सीधे वाइल्डिंग होंगे। पर साथ साथ में जो अभी नए बच्चे जो इसके आ रहे हैं राजस्थान में उनको भी जो वाइल्डिंग के प्रयास है वो भी हम लोग गुजरात में भी अब फिर से हम लोग उसका प्रयास भी करेंगे कि वाइल्ड में ये बच्चों को भी छोड़े जिससे इसकी संख्या जल्दी से बढ़ना शुरू हो, और जो अभी 4 की संख्या हमारे पास है तो वो जल्दी से बढ़ने लगे तो ये जो एंडेंजर्ड कैटेगरी है उससे एटलीस्ट लोकली हम लोग बाहर आ पाए।
1: डॉक्टर जयपाल सिंह, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया जंप स्टार्ट टेक्निक और साथ में जो नेचुरल टेक्निक है उसके बारे में। तो ये घुराड के वस्ते में संवर्धन हो तो उसमें जो चैलेंजेस है वो कौन कौन से है?
0: जैसे कि मैंने पहले बात किया था, एक तो इसका जो हैबिटेट होता है वो घास के मैदान होते हैं और घास के मैदान भी बड़े मैदान इसको चाहिए, ऐसे नहीं कि छोटे 2-4 हेक्टेयर के मैदान होगा तो उसमें इसका प्रजनन होगा और ये बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मैदान छोटा होगा तो इसके ऊपर खतरा बढ़ेगा, तो उसमें हम लोगों ने काफी प्रयास किए हैं कि वो 8-10 हजार हेक्टेयर तक के बड़े मैदान कंटिन्यूस पैच जो घास के हैं वो तैयार रहें। फिर हम लोग इसमें जैसे प्रोसोपिस है, इन्वेसिव स्पीसीज हैं जो कांटे वाली जाते हैं उनको भी हटाएं ताकि ये उसकी जगह पे घास अच्छा आए, तो ये है। फिर उसमें जो ग्रेजिंग के कारण थोड़ा खतरा होता है तो उसमें कम्युनिटी के साथ मिलके हम ग्रेजिंग कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। फिर अगर खुला विस्तार है तो उसमें गांव से फेरल डॉग्स का भी एक खतरा रहता है तो वो फेरल डॉग्स को कंट्रोल करने का भी प्रयास है। फिर उसके साथ ही जैसे छोटे कार्निवोर्स इस विस्तार में हैं उनके ऊपर ध्यान रखें, और जो खास करके जो ब्रीडिंग पीरियड है उस टाइम में वो छोटे कार्निवोर्स को भी हम लोग वहां से हटा पाए, थोड़ा मजबूत उसका फेंसिंग कर पाए उस विस्तार की ताकि वो एक सुरक्षित प्रजनन क्षेत्र के रूप में उपलब्ध हो, तब भी जो है जल्दी से इसकी बढ़ोतरी हो पाएगी।

0: डॉक्टर जयपाल सिंह, अभी अभी इसी साल गुजरात के पांचवे एक जो वेटलैंड्स है, जल प्लावित विस्तार, उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। तो आप श्रोता मित्रों को, ये हमने बात किया फ्लेमिंगो, सुरखाब, साथ में गोराड, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड, साथ ही साथ में कच्छ के एक अन्य विशिष्टता है जो रामसर साइट डिक्लेयर हुई है, उसके बारे में भी आप बताइए।
1: जैसे गुजरात जो है एक वेटलैंड के लिए, जो जल प्लावित विस्तार होते हैं उनके लिए खूब फेमस है, और

0: कन्वेंशन के तहत इनको रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है। उसका एक बड़ा लंबा थोड़ा प्रोसीजर है कि उसका जो पहले एक एप्लीकेशन सबमिट होती है, उसके बाद उसका बड़ा गहन आकलन होता है और वो आकलन के बाद ही उसको एक रामसर साइट का दर्जा दिया जाता है। तो अभी जैसे कच्छ में छारी डंड विस्तार जो और एक वेटलैंड है उसको रामसर साइट का दर्जा मिला है। बड़ा सुंदर एक वेटलैंड है और बहुत अच्छी संख्या में और अच्छी प्रजातियों के पक्षी उसमें आते हैं हर साल। तो उसको एक रामसर साइट का दर्जा मिलना हमारे लिए एक गौरव की बात है।
1: श्रोता मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 अप्रैल 2026 के मन की बात कार्यक्रम में गुजरात कच्छ के फ्लैमिंगोस, फ्लैमिंगो सिटी, सुरखाब और साथ ही में घोराड द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड की बात की। इस बात के लिए विस्तृत मार्गदर्शन के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में गुजरात राज्य वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री और साथ ही में गुजरात राज्य वन बल प्रमुख डॉक्टर जयपाल सिंह उपस्थित रहे और साथ ही में कच्छ ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट आयुष वर्मा जी भी उपस्थित रहे। आकाशवाणी और श्रोता परिवार के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।
0: आपका भी खूब खूब धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 जिसमें आज हमारा विषय था प्रकृति का संरक्षण। कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञों ने हमें जानकारी दी फ्लेमिंगो और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों के संरक्षण के बारे में। हमारे विशेषज्ञ थे श्री जयपाल सिंह, भारतीय वन सेवा अधिकारी, अग्र मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वन विभाग गुजरात राज्य, और श्री आयुष वर्मा, जिला वन संरक्षक कच्छ ईस्ट डिवीजन वन विभाग गुजरात राज्य। आपसे बातचीत कर रहे थे श्री हितेश मावाणी, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी। इस कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग था राजेश खराड़ी का। कार्यक्रम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकानिया अब पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।

जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाएगी। बस ट्रक एवं आंबुलांस गुड़िक उपरे एबे एक प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाएगी, जहां पूर्वरु 28% थिला। एचएस कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मैन्युफैक्चरर्स एवं पार्ट सप्लायर को समस्या कम हो तथा सप्लाई चेन सहज होबार संभावना रही। खुशीर कथा एही जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र रे कौनसी परिवर्तन करा जाई नहीं। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे 5% रिहाती जीएसटी दरर लाभ उठाई परिबे, जहाद्वारा एही जान गुड़िक सबुठारु कम टैक्स युक्त जानवाहन मध्यरे रहिजिबो।

वेलकम बैक ट्यून कुचिन म्यूजिकल योर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन बोकडक दे चले तक रे रेडियो हम सबर सागर छ आपन के सहित सो चल छी किछ कथा किछ गीता फ्रेंड्स अनेक समय रे हमें हारि माहु किंतु मु परिबिनी भावना हम को सब बड़े हराय दे थे से एग्जाम हो किबा जॉब जीवन रे जे कोनी से संघर्ष प्रथम दरकार हुए निज ऊपर नियति बापरे भरोसा करिबा मन रखंतु धीरे चलले भी आपण चली परिबे किंतु निज पाद को केबे छोट भावंत नाही ए गोटी छोटी स्टेप जदि आपण आगु को बढाइबे तबे देखिबे लाइफटा केमति आगु को नियति बापरे बढि चलिबो आपण सक्सेस नियति बापरे हि परिबे

0: ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋଟ 138,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର .gov.in ରେ ଆଜି ହିଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ।
1: वेलकम बैक चुनको चुन म्यूजिकल योर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेन बकडक दल से दिल तक रे रेडियो हम सबर सागर अच्छी आप लोगों सहित सो चल ची किच कथा किच किता फ्रेंड्स आत्मविश्वास रो अर्थ गर्व नुहे यार अर्थ होची मो पकरे शक्ति अच्छी मुनिया दिवाबरे चेष्टा करबी गोटे छोटो शिशु जेतेबेले चालिबा सिखे से केते थर पड़ी जाए किंतु से केबे भाबेनी मु चाली परिबे नहीं सेति पई त से दिने दौड़ी बा सिखि जाए जीवन मध्य सेम थी जे माने निजो को विश्वास करंदी से माने दिने निसे सफल पोंदी।

वेलकम बैक टू कुचिन म्यूजिकल योर 100.4 आकाशवाणी एफएम रेनबो गडक दलसे दिल तक रे रेडियो हम सबर सागर अछि आपन को सहित सो चलचे किछ कथा किछ गीता फ्रेंड्स केबे कहार कथा रे

जीएसटी काउंसिल कमर्शियल बिजनेस रे टैक्स को आहुरी सरल कर दिया जाय छि। बस ट्रक एवं आंबुलेंस गुड़िक उपरे एबे एको प्रकार 18% टैक्स कर दिया जाय छि, जहां पूर्वरु 28% थिला। एचएस कोड क्लासिफिकेशन को खातिर न करी ऑटो पार्ट्स उपरे एबे केवल गोटिए टैक्स माने 18% टैक्स कर दिया गला। एही पदक्षेप द्वारा मैन्युफैक्चरर्स एवं पार्ट सप्लायर को समस्या कम हो तथा सप्लाई चेन सहज होबार संभावना रही। खुशी कथा एही जे इलेक्ट्रिक जान क्षेत्र में कौनसी परिवर्तन करा जाए नहीं। समस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एवं इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर उपरे 5% रिहाती जीएसटी दर लाभ उठाई पारे, जहाद्वारा एही जान गुड़िक सबुठ कम टैक्स युक्त जानवाहन मध्यरे रही जीव।